सहज सुभाय अंग तन बहुत उपजया पृथ्वी रजी तृप्त अघाय सदा सदा गुण उच्चर दुख दाल गया बिलाय पूर्व लिखया पाया मिलया तिसे रिजाए परमेश्वर जीवालिया नानक तिसे तिहाए महला पंजवा जीवन पद निर्वाण इको सिमरी है दूजी ना ही जाए इन बेदा तीरी है डिठा सब संसार सुखना नाम बेन तान तान होसी शार जाने कोय जान रंग रूप रस बात के करे प्राणिया जिस भुलाए आप फिर कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावगी नानक शरण द्वार जे तुद पावगी पौड़ी जमन मरण ना तिनको जो हर लड़ लागे जीवत से प्रवान होए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से ही वडभागे नाए विसरे त्रिख जीवना टूटे कच तागे नानक धूल पुनीत साध लख कोट पेरागे सलोक महला पंजवा तरण सुवनी खाड़ रतन जड़ावी हर प्रेम पुरख मन उठा सबे काज सुहे लड़े थीए गुर नानक सदगुर तुठा महला पंजवा फिरदी फिरदी दै दिशा जल पर्वत बनराए जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़ी है सो सच कमावो नेड़े देखो पार ब्रह्म एक नाम त्याव होए सगल की रेणका का

राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाओ मन मारण कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत न पाइए, जे पावक सुर नर है जारे, राम उदक जन जलत उबारे, पाव सागर सुख सागर माही, पीवरे जल निखुटत नाही, कहे कबीर पज सार्ग पानी, राम उदक मेरी तिखा बुझानी, गौड़ी कबीर जी माधव जल की प्यास न जाए।

केवल राम। गौड़ी कबीर जी, नगन फिरत जाओ पाइए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग, क्या नांगे क्या बाधे चाम, जब ने चीन सयात्म राम, हरहाओ मूड मुडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गई आकाई, बिंद राख जाओ तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई, कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बेन किन गद पाई। गौड़ी कबीर जी, संध्या प्रात स्नान कराही, ज्यों पै दादर पानी माही, जाओ पै राम राम रत नाही, ते सब धर्म राय कै जाही, रहाओ काया रत बहरू पर चाही, तिन को दया सुपने पी नाही, चार चरण कह बहु अगर, साधु सुपावे कल सागर, कहो कबीर बहु काय करी जय, सर्ब छोट महारस पीजय, कबीर जी गौड़ी क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जा कर दे पाओ है दूजा, रे जन मन मध स्यों लाई है, चतराई ना चतर पुज पाई है, रहाओ पर हर लोभ हर लोकाचार, पर हर काम क्रोध अहंकार, कर्म करत बदे अमेव, मिल पाथर की कर ही सेव, कहो कबीर भगत कर पाया, ओले पाए मिले राग राया।

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन पावे रहाओ। जे कड़ राम रहया भरपूर, इनकी पाग।

नाम है जोग ध्यान चित लाया, बिन बैराग न छूट समाया, कैसे जीवन होए हमारा, जब ना होए राम नाम अधारा, रहाओ कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो आन, गौड़ी कबीर जी जे सिर राचे।

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगया पावे। बिखिया अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुखते से ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साज कर जाना। संकारक नारद मुन सेखा, तिन पी तन मैं मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, ता छूटे मन कहां सुमाई। गुर प्रसादी जय दो नामा, भगत के प्रेम इन ही है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साज पछाना। इस मन को रूप न रेख्या काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ सुमाई। इस मन का कोई जाने पेओ, ए मन लीन पय सुख देओ। जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को रव रहे कबीरा। गौड़ी गुवारेरी अहे निस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध पय लिव लागे। रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तरतारे। जो हर हरे सो होए न आना, कहे कबीर राम ना पछाना। गौड़ी पी सोठ पी रे जी न लज, लाज तोय नाही। हर ताज कद काहू के जाही। रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई, सो जन पर कर जातन सोही। सो साहेब रहा पर पूर, सदा संग नाही हर दूर।

साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छिड़ाए, अमृत नाम जपो जब रसना, अमोल दास कर लीनो अपना, सतगुर कीनो पर पुकार, काढ लीन सागर संसार, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गोविंद बसे निता नित चीत, माया तप्त बुझिया अंग्यार, मन संतोख नाम आधार, जल थल पूर रहे प्रस्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दरड़ाई, पूर्व लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे जिस पूर्ण साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज, जल के सूतक थल के सूतक, सूतक ओपत होई, जन्मे सूतक मुगे फुन सूतक, सूतक परज बगोई, कौरे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता रगाओ, नयनो सूतक बयनो सूतक, सूतक श्रवणी होई, उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परे रसोई, फासन की बेद साव को जाने, छूटन की एक कोई, कहे कबीर आराम हृदय बेचारे, सूतक तिने न होई गौड़ी, झगड़ा एक नबे रहो राम, जो तुम अपने जन सो काम, रहाओ यो मन बड़ा के जासो मन मानिया, राम बड़ा कह रामे जानिया, ब्रह्मा बड़ा के जास उपाया, वेद बड़ा के जाते आया, कहे कबीर हो पया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास, अराग गौड़ी चेती देखो पाई, ज्ञान की आई आंधी, सवे उड़ानी प्रम की टाटी, रहे न माया बांधी, रहाओ दुचित्ते की दो थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तिसना शान परी तारी ऊपर, दुर्मद पांडा फूटा, आंधी पाचे जो जल बरख, ते तेरा जन पीना, कहे कबीर मन पया परगासा, उदय पान जब चीना, गौड़ी चेती एक ओ अंकार, सदगुर प्रसाद हर जस सुने न

कयो मन बौरार माया यो व्यवहार जैसा रंग सुंभ का मन बौरार त्यों पसरियो पासार नावन को तीर्थ कने मन बौरार पूजन को बो देव कहो कबीर छूट नहीं मन बौरार टूटन अगर की सेव गौड़ी अग्न न दह पवन नहीं मगन है तस्कर नेर न आवे राम न तन कर संचौनी सो तन कथी न जावे हमारा तन माधो गोविंद तरणी तार ए सार तन कही है जो सो प्रभु गोविंद की सेवा सो सुख राज न लई है हरहाओ इस तन कारण से संकादक खोज पै उदासी मन मुकंद जे बा नारायण परे न जम की फासी निज तन ज्ञान पद गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अंब थंब मन तावत परम बंधन पो पग कहे कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट असवस्ती हम कर एक मुरारी गौड़ी जो कब के कर मुहित चनन की लुब्ध न त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच सियो ते फिर गरे परे हो भगत बेन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बेन कही न सच रहो रखाओ ज्यो उद्यान कुसुम प्रफुल्लत किने न कराओ लयो तैसे प्रमत अनेक जोन में फिर काल हयो या तान जोबन आर सुधारा पेखन को जो दयो तिन ही माहे अर्ग जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो औध अनल तन तिन को मंदर चौध ठाठ ठयो कहे कबीर है सागर तरण को मैं सदगुर ओट लयो गौड़ी पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी मैं नाही बस आए न मोरा तन तन सबरस गोविंद तोरा रखाओ इस माटी में पमन सुमाया झूठा प्रपंच जोर चलाया किन्हू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कहे कबीर एक नीव सारी खिन में बिल सजाए अंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे त्रू प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परिवार चिढ़ाया बेड़े रहाओ जत पावे तहुक मनावे इस बेड़े को पार लंघावे गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चुग गई फिर आमन जानी कहो कबीर भज सारंग पानी उरवार पार सब एको दानी गौड़ी नावी जोन छाड़ जो जग में आयो लागत पवन खसुम बिसरायो जियरा हर के गुना गाओ रखाओ गर्भ जो में उर तब करता तो जठर अग्नमय रहता लगत उसी जोन प्रमे आयो अब के शुटके ठौर न ठायो कहो कबीर पर सार्ग पानी आर्त जिसे जात न जानी गौड़ी पूर्वी सुर्गवास ना बाची है डरके नरक निवास होना है सो होई है मने न की जे आस रमैया गुण गाइये जाते पाइये पर मन धान रखाओ क्या जप क्या तव संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जूत न जानिए पाओ भगत भगवान संपे देख न हरखिए विपत देख न रोए जो संपे त्यो विपत है विद ने रचिया सो होए कहे कबीर अब जानिया संतन हृदय मजार सेवक सो सेवा पले जे कड़ बसे मुरार गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार बिरख बसेरो पंख को तैसो यो संसार राम रस पिया रे जे रस बिसर गए रस और रखाओ और मुए क्या रोई है जो आपा थिर ना रखाए जो उपजे सो बिनस है तो का रोवे बलाए जय की उपजी तै रची पीवत मर्दन लाग तय कबीर किद चेतया आराम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी लोचन परी ले उसासा और ना पीजे पग ना खिसे हर दर्शन की आसा उड़ो ना कागा कारे बेग मलीजे अपने राम प्यारे रहो कहे कबीर जीवन पद कारण हर की पगत करीजे एक आधार नाम नारायण रसना राम रवीजे राग गौड़ी ग्यारवी आस पास कण तुरसी का बिरवा माज बनार सुगाऊ रे हुआ का स्वरूप देख मुई ग्वारन
मोको छोड़ न आऊ न जाहूरे, ओहे चरण मनला को सारंग तार, सो मिले जो बड़ भागो रघाओ, बिंद्राबान महरन मनोर कृष्ण चिरावत गाऊरे, जाका ठाकुर तुई सारंग तार, मोहे कबीरा नाऊरे, गौड़ी पूर्वी बारवी बिपल बस्तर केते हैं पैरे, क्या मन बदे बस कहा पया नर देवा धोखे, क्या जल बोरियो ज्ञाता, जियरे जाएगा मैं जाना, आगत समझ ए आना, जद जद देखो बौर ना पेखो, संग माया लपटा ना रघाओ, ज्ञानी त्यानी ब उपदेसी, यो जग सगलो तंडा, कहे कबीर एक राम नाम बेन, या जग माया अंधा, गौड़ी बारवी मारे छाडो परम पलट होए नाचो, या माया के डांडे सूर के सनमुख रन ते डर पे, सती के सांचे फांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद पाइये, लीनो हाथ संधौरा रहाओ, काम क्रोध माया के लीने या फिर जगत बिगूता, कहे कबीर राजा राम न छोड़ो, सगल ऊंच ते ऊंचा गौड़ी तेरवी, फुरमान तेरा सिरे ऊपर फिर न करत विचार, तुही दरिया तुही करिया तुझे ते निस्तार, बंदे बंदगी एक तैयार, साहिब रोस तरो के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा जो फूल जई है नार, कहे कबीर गुलाम करका जियाए पावे मार, गौड़ी लग चौरासी जी जोन में प्रत नंद बोथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो होए, आग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दसनाही तब यो नंद कहां थोरे रहाओ, संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जा के माई ना बापोरे, गौड़ी

बैकुंठ जाइए ना पदार्थ मने बसाइए। हृदय सुजो निंदा होए हमरे कपड़े निंदक धोए। निंदा करे सो हमारा मीत निंदक माए हमारा चीत। निंदक सोजो निंदा हो रे हमारा जीवन निंदक लोरे। निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमारा करे उधार। जन कबीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरभव तरन तारन राम राया। अरहाओ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पय है एक के देखत मन पतिया ही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा अब बुद्ध बल ना खटाई। कहे कबीर बुद्ध हर ली मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी। खट नेम कर कोठड़ी बंदी बस अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्प प्राण कर राखे करते बार न लाई। अब मान जागत हो रे पाई गाफल हुए के जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ पंच पैरुआ दर में रहते इनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चेत हुए रहो तौले प्रगास उजारा। नाव कर देख जो कामन पूली बस अनूप न पाई। कैत कबीर नवे कर मुसे दसवें तत् सुमाई। गौड़ी माई मुहे अवर ना जान्यो आना ना। थे सुनकाद जस गुण गावे तस बसे मोरे प्राणाना। रहाओ हृदय प्रगास ज्ञान गुरगमत गगन मंडल में ध्यानाना। बिखे रोग पय बंधन पग मन निज कर सुख जानाना। एक सुमतरत जान मान प्राप्त दूसर मने ना आनाना। चंद्र बाज पय मन बसन त्या कट्यो अब मानाना। जो जन गाये त्याय ठाकुर तास प्रभु है थानाना। ते बड़पा बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथानाना। काढ़ सकत शिव सह प्रगास्यो एक एक सुमानाना। कहे कबीर गुर पेट महासुख परम तरह मन मानाना। राग गौड़ी पूर्वी

अक्षर लो त्रै साब कस ए नकीम आ गए, ए अखर खिर जाएंगे, ओए अखर इन मैन आ गए, जा बोलते अक्षर आवा, जय अबोल तय मन ना रखावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लखे ना कोई, अले लहो तो क्या कहो, कहो ता को उपकार, बड़क बीज मैं रव रहे हो, जाको तीन लोग विस्तार, अले लहंता पेद शय, कश कर पायो पेद, उल्ट पेद मन पेद्यो, पायो अपंग अशेद, तुर्क तरीकत जानिए, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारण, कशुक पढ़िए ज्ञान, ओंकार आद मैं जाना, लिखर मेटे ताए न माना, ओंकार लखे जो कोई, सोई लख मिटना ना होई, कक्का किरण कमल में पावा, सद विकास संपट नहीं आवा, हर जे तह कुछ मरस पावा, आके कहा कह का समझावा, खखा ए खोड़ मन आवा, खोड़े शाड ना दैद स्तावा, खसमे जान खिमा का रहे, तो होए नख्याओ अखय पदल है, गग्गा गुर के भजन पछाना, दूजी बात न तरई काना, रहे बिहंगम कते ना जाई, आगे गहे गह गगन रखाई, तग्गा काट काट निमसे सोई, काट फूटे कड़ कबे न होई।

करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ, अहिर अखंड सो रही जाए, तो अनहद बेण सहज मय बाय, सोमवार सज अमृत चरे, त्यागत बेग सगल बिखरे।

परगास, हृदय कामल मैं हर का वास। गुर मिल दो एक सम तरे, उर्द पंकले सूदा करे। बृहस्पति दिखिया दे बिहाय, तीन देव एक संगलाय। तीन नदी ते त्रिगुटी नागे, अंश कसमल तो वे नागे। सुकृत सहारे तो ए व्रत चढ़े, अंत ने आप आप स्यो लड़े। सुरखी पंचो राखे सब, तो दूजी दृष्ट न पैसे कबे। थावर सिर कर राखे सोए, जोत दी वट्टी कड़ में जोए। बाहर पीतर पया परगास, तब हुआ सगल कर्म का नास। जावला कट में दूजी आन, तौलो महल ना लाभे जान। रमत राम स्यों लागो रंग, कहे कबीर ता निर्मल अंग। राग गौड़ी चेती बाणी, नाम दियो जियो की। एक ओंकार सदगुर प्रसाद, देवा पान तारी ले। राम कहत जन कसना तरे, रघाओ तारी ले गनका बिन रूप कुबजा। ब्याल अजामल तारी ले, चरण बदक जन तेउ मुक्त पहे। औ बल बल जिन राम कहे, दासी सो जन बिदर सुदामा। उग्रसैन को राज दिए, जापहीन तपहीन कोलहीन क्रमहीन। नामे के स्वामी तेउ तरे, राग गौड़ी रविदास जी के पदे। गौड़ी गुवारेरी एक ओंकार, सत नाम करता पुरख गुर प्रसाद। मेरी संगत पोत सोज दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभांति। राम गुसैया जी के जीवना, मोहे नाम सारो मैं जन तेरा। रहाओ मेरी हरो विपत जन करो सुपाई। चरण ना छाडो शरीर कल जाई, कहो रविदास परो तेरी सांभा। बेग मिलो जन करना विलंबा, बेगमपुरा शहर को नाओ। दुख अंधो नहीं तेठाओ, ना तस्वीस खिराज ना माल। खोब ना खता न तरस जवाल, आ मैं खूबतन गए पाई। ऊहा खैर सदा मेरे भाई, रघाओ कायम दायम सदा पातशाही। दो मना सेम एक सो आही, आबा दान सदा मशहूर। ऊहा गनी बसे मामूर, त्यों त्यों सैल करे जो पावे। महरम महल न को अटकावे, कहे रविदास खरा चुमारा। जो हम सहरी सो मीत हमारा। एक ओंकार सदगुर प्रसाद, गौड़ी बैरागन रविदास जियो। काट आव काट डूगर कणा, एक निर्गुण बैल हमार। रमैये सो एक बेन।

नदर करे जो कुछ करना सो कर रहा अवरण करना जाई जैसा वर्ते तैसो कही है सब तेरी वड्याई काल कलवाली माया मद मीठा मन मतवाला तीवत है आपे रूप करे बो भांति नानक बपड़ा एव कहे आसा महला पहला वाजा मत पखाव जपाओ होए आनंद सदा मन चाओ एहा भगत एहो तपताओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पूरे ताल जाने साला और नचना खुशियां मन माह हरहाओ सत संतोख वजे दोए नाल पैरी वाजा सदा निहाल राग नादनी दूजा पाओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पौ फेरी होवे मन चीत बहिंदिया उड़दिया नीता नीत लेटन लेट जाने तन स्वाह ए तरंग नाचो रख रख पाओ सिख सबादी क्या का पाओ गुरमुख सोनना साचा नाओ नानक आखण मेरा वेर ए तरंग नाचो रख रख पैर आसा महला पहला पौने पाए तरी सब धरती जल अग्नि का बंद किया अंदले दहसर मूंड पिटाया रावण मार क्या वड्डा पाया क्या उपमा तेरी आखी जाए तू सर्वे पूर रहया लिवलाए रहाओ जी उपाय जुत खत कीनी काली नत क्या वड्डा पाया किस तू पुरख चोरू कौन कही है सर्व निरंतर रव रहया नाल कुटंब सास वरदाता ब्रह्मा पालन सिट गया आगे अंत न पायो ताका कंस छेद क्या वड्डा पया रत्न उपाय तरे खीर मथया होर पगलाए जे असी किया कहे नानक छपे क्यों छपया एकी एकी वंड दिया आसा महला पहला कर्म करतूत बेल विस्तारी आराम नाम फल हुआ तिस रूप नारेख अनाह दवाजे शब्द निरंजन किया करे विखियान जाने जे कोई अमृत पीवे सोई रहाओ जिन पिया से मस्त पय है टूटे बंधन फाहे ज्योति जो सुमानी पीतर ता छोड़े

बंद, खीन खराब होवे नित कंद, खान जीवन की बहुती आस, लिख तेरे साध गिरास, अहंस अंधले दीपक दे, भौजल डूबता चिंत करे।

मन वसे आए, नदर करे ता सदगुर मिले, परमत नानक पोजल तरे। आसा मोहल्ला पहला पंच बदे, दुध बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उदबुज काम नाही। क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही। की विसर दुख बहुता लागे, दुख लागे तू विसर नाही। हरहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पौन ना वाजे, चरणी चले पजूता आगे, विण सेवा फल लागे। अखर देख बाग पै चोखी, सिंचित भाव करेगी, सबना फल लागे नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेगी। जेते जी तेते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही। दुख सुख पाना तेरा होवे, विण नावे जियो रहे नाही। मत विच मरण जीवन होर कैसा, जा जीवा ता जूत नाही। कहे नानक जीवाले जिया, जय पावे है राख तुही। आसा महला पहला, काया ब्रह्मा मन है धोती, ज्ञान जनेऊ ध्यान कुसपाती। हर नामा जा जा चौनाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामो पढ़ो, नामे चज आचार रखाओ। बार जनेऊ जिचर जोत है नाल, धोती टिक्का नाम सुमाल। ऐथे उथे निभगी नाल, विण नावे होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया परजाल, एको वेखो अवर ना पाल। तीने तत गगन दा द्वार, हर मुख पाड़ पड़े बीचार। भोजन पाओ परम पाओ भागे, पारू रश बचोर न लागे। तिलक ललाट जाने प्रवेक, बूझे ब्रह्म अंतर बवेक। आचारी नहीं जीत्या जाए, पाठ पड़े नहीं कीमत पाए। अष्टदशी चौपेद न पाया, नानक सदगुर ब्रह्म दिखाया। आसा महला पहला, सेवक दास भगत जन सोई। ठाकुर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन पुन गोई। तिस बिन दूजा अवर ना कोई, साच नाम गुर शब्द विचार। गुरमुख साचे साचे दरबार रखाओ, सच्चा अर्ज सच्ची अरदास। मैलनी खजम सुने साबास, सच्चे तख्त बुलावे सोए। देव डियाई करे सो होए, तेरा तान तू है दी बाण। गुर का शब्द सच निशान, मन्ने हुक्म सु प्रगट जाए। सच निशाने ठाक न पाए, पंडित पढ़े वखाने वेद। अंतर अवस्त न जाने भेद, गुर बिन सूझी बूझ न होए। साचा रव रहा प्रसोए, क्या हो अखा अख वखाणी। तू आपे जाने सर्व वडाणी, नानक एको दर दी बाण। गुरमुख साजता गुजराण, आसा महला पहला। काची गागर दे दुखेली, उपजे बिनसे दुख पाई। यो जग सागर दुत्र क्यों तरिए, बिन हर गुर पार न पाई। तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे, तुझ बिन अवर ना कोए हरे। सर्बी रंगी रूपी तू है, तेस बगसे जिस नदर करे रखाओ। सास बुरी कर वास न देवे, फिर स्यों मिलन न दे बुरी। सखी सजनी केखो चरण सरेव, हर गुर कृपा ते नदर तरी। आ विचार मार मन देखया, तुम सामीत न अवर कोई। ज्यों तू रख तिभगी रहना, दो सुख देवे करे सोई। आसा मनसा दऊ बिनास्त, त्रिगुण आस निरास पई। तुरियावस्था गुरमुख पाई है, संत सभा की ओट लगी। ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप, जिस हर हृदय अलख पेव। नानक राम नाम मन रत, गुरमत पाए सहज सेवा। आसा महला पहला, पंच पदे मोह कुटुंब मोह सवकार। मोह तुम तजो सगल वेकार, मोह अर परम तजो तुम वीर। साच नाम हृदय रवे शरीर, रहाओ सच नाम जा नवन दपाई। रोवे पूतना कल पैमाई, एत मुए डूबा संसार। गुरम कोई उतरे पार, एत मुए फिर जूनी पाहे। मोहे लागा जम पुर जाहे, गुर दिखिया ले जब तब कुमागे। ना मो टूटे न थाए पाहे, नदर करे ता यो मो जाए। नानक हर्षों रह सुमाए। आसा महला पहला,
ਆਪ ਕਰੇ ਸੱਚ ਅਲਖ ਪਾਰ। ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸਣ ਹਾਰ, ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਹੜ ਕੀਤੇ ਅੰਤ ਵਗੋਵੇ ਰਖਾਓ, ਮਨ ਮੁਕੀ ਮਤ ਕੂੜ ਵਿਆਪੀ। ਬਿਨ ਖਾ ਸਿਮਰਨ ਪਾਵ ਸੰਤਾਪੀ, ਦੁਰਮ ਤਿਆਗ ਲਹਾ ਕਿਛ ਲੇਵੋ। ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਅਲਖ ਪੇਵੋ, ਐਸਾ ਹਮਾਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਈ। ਗੁਰ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਈ, ਸਗਲੀ ਸੌਂਦੀ ਤੋਟਾ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਪਾਵੇ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪ ਦੇ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਪੁਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਪੰਚ ਰਾਸੀ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ। ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਜੇ ਜੇ ਮਨ ਲਾਗੇ, ਤਉ ਜਮ ਕਾਂ ਕਰੇ ਮੋਸੂ ਆਗੇ ਰਹਾਉ। ਆਸਨ ਰਾਸੀ ਤਉ ਸੁਨਿਆਸੀ, ਜਾਂ ਜੈ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਭੋਗੀ। ਦਇਆ ਦਿਗੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਪ ਮਰੇ ਅਵਰਾ ਨੇ ਮਾਰੀ। ਇਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੇਸ ਬੋ ਤੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਚੋਜ ਨਾ ਤੇਰੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਏਕ ਨ ਪਰੀਆਂ ਗੁਣ ਕਰ ਤੋਵਾ। ਮੇਰਾ ਸੋ ਜਗ ਹਉ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾ, ਇਉ ਕਿਉ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਸੋ ਜਗ ਹਉ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾ ਰਹਾਓ। ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸੇਜੇ ਆਵਾ, ਆਗੇ ਸਹਿ ਭਾਵਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਵਾ। ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਕਿਆ ਹੋਏ ਗਾਰੀ ਮਾਈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਹਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੀ, ਤਿਸ ਨਾ ਬੁਝਾਨੀ। ਗੈ ਸੋ ਜੋਗਨ ਤਨ ਪਛਤਾਨੀ, ਅਜੇ ਜਾਗੋ ਆਸ ਪਿਆਸੀ। ਪਈ ਲੈ ਉਦਾਸੀ ਰਹੋ ਨਿਰਾਸੀ, ਰਹਾਓ। ਹੋ ਮੈਂ ਕੋਏ ਕਰੀ ਸੀ ਗਾਰ, ਤੋ ਕਾਮਣ ਸੇਜੇ ਰਵੇ ਪਤਾਰ। ਤੋ ਨਾਨਕ ਕੰਤੇ ਮਨ ਪਾਵੇ, ਛੋੜ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਖਦਮ ਸੁਮਾਵੇ। ਰਹਾਓ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੇਵ ਕੜੇ ਤਨ ਖਰੀ ਇਆਣੀ। ਤੇ ਸਾਇਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਏਕ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਈ, ਰਹਾਓ ਸੋ ਰੜੇਤਨ ਸਾਚ ਪਛਾਣਿਆ। ਸਹਿ ਸੁਪਾਏ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਾਣਿਆ,

परदेश त्याग सौदे को आया, वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्ले आनी, देख रतन ओ मन लपटानी, सह व्यापारी द्वारे आए, वखर काढ़ो सौदा कराए, रहाओ सहे पठाया सहे पास, अमोल रतन अमोला रास।

तारी सगल जगत गृह ऐसा गए सुंदर लाल प्रभावा ता सदा निहाल बिंजन भोजन अंग प्रकार रंग तमासे बहुत विस्तार राज मिलख अर बहुत फुरमाइस मन ही त्रापे तृष्णा ना जायस बिन मिलबे इहो दिन ना बिहावे मिले प्रभु ता सब सुख पावे खोजत खोजत सुनी ए सोए साध संगत बिन तरियो ना कोए जिस मस्तक भाग तिन सतगुर पाया पूरी आसा मन तृप्ताया प्रमिलया ता चूकी डंजा नानक लद्दा।

बिगड़ रूप मन में अवमान तो निस्रूप सुजान बचकन आत गर्भ मुए फाकी तू रहाओ असूची तेरी पाकसाल कर स्नान पूजा तिलक लाल गली गर्भ मुख गोवे ज्ञान साबित खोई लोभ स्वान कापर पैरे पोगे पोग आचार करे शोभा में लोग चुआ चंदन सुगंध विस्तार संगी खोटा क्रोध चंडाल आवर जोन

तुझ पाए अमान, विष्टा अस्त रगत प्रेटे चाम। इन ऊपर ले राख्यो गुमान, एक वस्त बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिसते पाइये हर पुरख सुजान। आसा मोहल्ला पंजवा, एक तुके चौप दे, एक कड़ी दिन समुख को बहुत देगारे। मान ना रहे कैसे मिलो प्यारे, एक पल दिन से मुख को कभू ना बिगावे। दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मुख को पिरे मिलावे। हरहाओ चार पैर जो जुगे सुमाने, रैन पही तब अंत न जाने। पांच दूत मिल पिरो विछोड़ी, ब्राह्मण रोवे हाथ पछोड़ी। जन नानक को हर दर्श

आओ। हर रस की कीमत कही न जाए, हर रस साधु वार समाए। लाख करोरी मिले ना केहे, जिसे प्राप्त तिसरी देहे। नानक चाह पै विस्माद, नानक गुरते आया साध। ईत ऊत हर छोड़ न जाए, नानक गीदा हर रस माहे। आसा महला पंजवा, काम क्रोध लो मोह मिटावे। छुटके दुरमते अपनी तारी, होए निमाणी सेव कमावे। ता प्रीतम होवे मन प्यारी, सुन सुंदर साधु बचन उधारी। दुख भूख मिटे तुर सहसा, सुख पावे तू सुख मन नारी। अरहाओ चरण पखार करो गुरसेवा, आत्म शुद्ध बिख त्यास निवारी। दासन की होए दास दासरी, ता पावे सोभा घर द्वारी। यही अचार यही व्यवहारा, आज्ञा मान भगत होए तुम्हारी। जो यो मंत्र कमावे नानक, तो पौजल पारे उतारी। आसा महला पंजवा, दो पदे पई प्राप्त मानुख दे हुरिया। गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम। मिल साध संगत।

गुरपूरे, अंध भया सा मिटे रसूरे, रहाओ जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन त्याया, आसा महला पंजवा बाशत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मे क्यों बुझे बुझाई, ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओ ना बाला बूढ़ा पाई, हरहाओ नानक दास सास सरनाई, गुर प्रसाद को पार पराई, आसा महला पंजवा सदा सदा आत्म परगास, साध संगत हर चरण निवास, राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल सांत सदा सुख पावे, केल भग जाहे सबे मन तेरे, रहाओ कहो नानक जाके।

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा मोहल्ला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने गृह पीतर वारे। जन्म मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्ये रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एक को एक आप एक एक, एक कहे सगला पासारे। जप जप होए सगल साध जन, एक नाम तै बहुत उधारे। गैर गंभीर बेंत गुसाई, अंत नहीं किस पारा वारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे, नानक त्याए तै प्रभु को ना।

मुक्ते ए बबाड़े आया हुक्म पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े कर्म धर्म जुगत बहु करता करने गार न जाने उपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने नांगा आया ना गोजासी ज्यो हस्ती खाक शाने संत सज्जन सुनो सामीता झूठा यो पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खाब खा मोए गवा।

लागे साधु, नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग, वडभागे कृपा, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, राग आसा, कार सेवा, महला पंजवा, जो तुद पावे सो परवाना, सूग सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा, अवर नाही रे कोई, तेरे जान रसक रस गुण गावे, मसलत मता सियान बजन की, जो तू करह करावे, रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, तृप्त अगाए सही जन पूरे, सुख निदान।

मेरे पर हरिया बंधन काटे मुक्त भये अंध कूप महा कोर ते बहा पकर गुर काढ़ लिए निरपो पए सगल पो मिटिया राखे रखन हारे ऐसी दात तेरी प्रा मेरे तारज सगल सवारे गुण निदान साहेब मन मेला शरण पया नानक सोहेला आसा महला पनवा तू विसरे ता सब को लागू कीत आवे ता सेवा अवर न को दूजा सूज साचे अलख अपेवा।

तोई जो प्राणी काऊ न आवत काम संत प्रसाद ताको जपिए नाम साध संग मन सोवत जागे ता प्रभु नानक मीठे लागे आसा महला पंजवा एको एकी न निहारो सदा सदा हर नाम सुमारो राम रामा रामा गुण गावो संत प्रसाद साध के संगे हर हर नाम त्यावो रे अरहाओ सगल समगरी जाके सूद परोई कड़कड़ अंतर रव्या सोई ओबद परलो खिन में करता आप लेपा निर्गुण रहता करन करावन अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी आसा महला पंजवा।

गुरपूरे के चरण गए, कोड जन्म के पाप लहे, रतन जन्म यो सबल पया, कहो नानक प्रभु करी माया, आसा महला पंजवा। सतगुर अपना साध सदा सुमारे, गुर के चरण के संग चारे, जाग रे मन जागन हारे, बिन अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे, रहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए, गुर किरपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा ना हीताओ, गुर दाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप, आसा महला पंजवा। आपे पेड़ विस्तारी साख, अपने खेती आपे राख, जद कद पेखो एक है ओगी, कड़कड़ अंतर आपे सोई, रहाओ आपे सूर किरण विस्तार, सोई गुप्त सोई आकार, सरगुण निर्गुण थापे नाव, दो मिल एक है की नो ठाव, कहो नानक गुर ब्रह्म पौ खोया, अंध रूप सब नयन अलोया, आसा महला पंजवा। पुगत सियानप किशु ना जाना, दिन रहन तेरा नाम खाना, मैं निर्गुण गुण नाही कोय, तरन करावन हार प्रसोय, रहाव मूर्ख मुगध अज्ञान विचारी, नाम तेरे की आस मन तारी, जब तब संजम कर्म ना साधा, नाम प्रभु का मने अराधा, किशु ना जाना मत मेरी तोरी, विनवत नानक ओड प्रातोरी, आसा महला पंजवा। हर हर अखर दोए ए माला, जबत जबत पै दीन दयाला, करो बेनती सदगुरे अपनी, कर किरपा रखो शरणाई, मोको देव हरे हर जपनी, रहाओ हर माला और अंतर तारे, जन्म मरण का दुख निवारे, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जान ए तुत कते न डोले, कहो नानक जोरा चैन आए, हर माला ताके संग जाए, आसा महला पंजवा। जिसका सब किसका होए, हे जन लेपना व्यापे कोए, हर का सेवक सदगी मुक्ता, जो कुछ करे सोई फल जान के, आत्म निर्मल दास की जुगता, रहाव सगल त्यागर शरणी आया, हे जन काम व्यापे माया, नाम रहान जाके मन माहे, जिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुरपूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा। जो सो प्रसन्न होयो प्रा मेरा, ता दुख परम कौ कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोय निर्गुण कौ लिहो उधारी, रहाओ मिट गया दुख सारी चिंता, फल पाया जब सदगुरु मंता, सोई सत सत गए सोए, सेमर सेमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन मसिया घर नम्मा, आसा महला पंजवा। काम क्रोध अंकार विभूते, हर सिमन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, रहाओ मोह परम्भो जोन पवाया, अस्थिर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंध कूप गृह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहो नानक तो प्रसरणाई, ईहा सुख आगे गद पाई, आसा महला पंजवा। तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे, तू मेरा ठाकुर हम तेरे द्वारे, तू मेरा कर्ता हम सेवक तेरा।

तू समरथ मैं तेरा तान, आनंदन जपो नाम गुणतास, नानक की प्रपय अरदास। आसा महला पंजवा, रोमन हारे चूड़ कमाना, हस गा सोक करत बेगाना, को मुआ का के कर गावन, को रोवे

नरक सुर्ग फिर अवतार कहो नानक जो लाया नाम सबल जन्मता का प्रवान। आसा मोहल्ला पंजवा सोए रही प्रभ खबर न जानी और पय बौर पछतानी प्रे प्रेम सहजमन अंध तरोरी प्रभ मिलबे की लालसा ताते आलस कहां करोरी रहाओ। कर्म अमृत आन निसारयो खिसर गयो तुम पर डारयो साध मुहे लादी अंकारे दोष नहीं प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे नानक मेली सिर जनहारे। आसा महला पंजवा चरण कमल की आस प्यारे जम कंकर नस गए विचारे तू चित आवे तेरी माया सिमरत नाम सगल रोग खया हरहाओ। अनक दुख देवे अवरा कहो पहुंच न साके जन तेरे कहो दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद बसे बैरागी नानक की अरदास सुनी जय केवल नाम हृदय में दीजे। आसा महला पंजवा मन तृप्तानो मिटे जंजाल प्रभ अपना होया कृपाल संत प्रसाद परी बनी जाके गृह सब किस गए पूर्ण हो फेटिया

सदा प्रफुल्ल काढ़ काढ़ संपट हय रे जाका अपग सब संघ है सदा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त तिस ही लेना संत चरण ओ आयो सरना आचड़े हर साल ग्राम।

साथ पार ब्रह्म के संगी साध चित्तर गुप्त सब लिखते लेखा भक्त जिना को दृष्ट न पेखा कहो नानक जिस सदगुर पूरा वाजे ताके अनगद तूरा आसा महला पंजवा दो पदा एक साधु संग सखायो नाम सर्व मनोरथ पूर्ण काम बुझगी तिशना हर जसे अगाने जप जप जीवा सारग पाने तरन करामन सरन परया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटया अंधेरा चंद चढ़या रहाओ लाल जवेर परे पंडार तोट न आवे जप निरंकार अमृत शब्द पीवे जन कोए नानक ताकी परम गत होए आसा कर सतवा महला पंजवा हर का नाम हृदय निर्ध्याई संगी साथी सगल तराई गुर मेरे संग सदा है नाले सेमर सेमर तेस सदा संभाले रहाओ तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे आसा महला पंजवा साधु संगत तरिया संसार हर का नाम मने आधार चरण कमल गुरुदेव प्यारे पूजे संत हर प्रीत प्यारे रहाओ जाके मस्तक लिखया भाग कहो नानक ताका फिर सुहाग आसा महला पंजवा मीठी आग्या फिर की लागी सौकन कर की कंत त्यागी प्रे सुहाग सीगार करी मन मेरे की तप्त हरी पलो पयो प्रे कहया मानया सुख सहज इस कर का जानया रहाओ हो बंदी प्रे खिजमत दार ओ अविनाशी अगम पार ले पख प्रे चिल्लो पाए भाग गए पांच दूत लावे ना मैं कोल ना शोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत होए अनाथ गरीब निमानी कंत पकर हम की नीरानी जम प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सोहागा कहो नानक

ऐसी स्त्री एक राम उपाई, उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई। रहाओ बैठ गौरी सब जग जोया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोया। गुरमुख नाम लगे से सोया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना। तट तीर्थ पवे सब तरना, से उबरे ये सदगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बाधा, हम पचे मनमुख मुँह राखा। गुरु नानक बां पकड़ हम राखा, आसा महला पंजवा। सर्व दुख जब सरे स्वामी, ईगा उहा कामना प्राणी। संतृप्ता से हर घर त्याए, हर कृपा अपने नाए लाए। सर्व सुख पर तुमरी रजाए, रहाओ संग होवत को जांत दूर। सो जन्म मरता नित नित चूर, जिन कछ दिया ते चित तनाहे। मां बिखिया में दिन रहन जाहे, कहो नानक प्रसिमरो एक। गद पाई गे गुर पूरे टेक, आसा महला पंजवा। नाम जपत मन तन सब हरिया, काल मर दोख सगल पर हरिया। सोई दिवस पला मेरे पाई, हर गुण गाए परम गद पाई। रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे उपद्रे मन ते बैर। गुर पूरे मेल चगर चुकाया, पांच दूत सब वस गद आया।

सर्व सुख पावे, आवर कहू पे बौर ना जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद प्रभ मनवासी है रहाओ, जाका दान मिखूटे नाही, भली पांत सब सह समागी, जाकी बख्सना मेटे कोई, मन वासाई गे सचा सोई, सगल समगरी ग्रे जाके पूरन, प्रभ के सेवक।

बंधन काट सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे, वडे भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रसरना, गुर नानक जाको पया दयाला, सो जन होआ सदा निहाला, आसा महला पंजवां, सतगुर साचे दिया भेज, चिर जीवन उपजिया संजोग, उदरे माए आए किया निवास, माता कै मन बहुत विगास, जम्या पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सामे लिखिया तुरका रहाओ। दसी मासी उगुं बालक जन्म लिया, मिटिया सोग मां आनंद चिया, गुरबाणी सखी आनंद गावे, साचे साहिब कै मन भावे, वदी वेर बहु पीढ़ी चाली, धर्म कलागर बंद बहाली, मन चिंदिया सतगुरु दिवाया, पै अचिंत एक लिवलाया, ज्यो बालक पिता ऊपर करे बहुमान, बुलाया बोले गुर के पान, गुजी छन्नी नाही बात, गुरु नानक तुठा की नींदात, आसा महला पंजवा, गुर पूरे राख्या दे हाथ, प्रगट पया जन का प्रताप, गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई, जी की अरदास गुरु पे पाई, रहाओ शरण परे साचे गुरदेव, पूर्ण होई सेवक सेव, जियो पिंड जोबन राखे प्राण, कहो नानक गुर को कुर्बान।

वंजन वहन्दे बोतड़ा चरण मन चढ़ लंगी है आड़ पैर गुण गाय साधु संगी है रहाओ भोगे भोग अनेक विण नावे सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया कपड़ पो सुगंध तन मर्दन मालना बिन सिमरन तन शार सर पर चालना मां विघम संसार विरले पेखिया छूटन हर की सरण लेख नानक लेखिया आसा महला पंजवा कोय न किसी संग काहे गर्बी है एक नाम आधार पौजल तरबी है।

तद ही ते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जावला हुक्मना बूझता तभी लो दुखिया गुरम हुक्म पछाणिया तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ गृह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने साध सद बल जाओ गुरु विटो हो वारे जिस मिल सच सुवाओ रहाओ सागन अपसागन किसको लग जे चीत न आवे।

मार्ग पंथ सुम्हारी नाम दृढ़ गुर मन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रैनी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विश्वास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान दो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा नयन दर्श देखो।

मालमूत मूड़ जे मुग्ध होते सब लगे तेरी सेव रखाओ। तू आप करता सब सृट तरता समय रहा सुमाए धर्म राजा बिस्माद होआ सब पई पैरी आए। साजुग त्रेता द्वापर पणिए कालजुग ऊतमो जुगा माहे अहे कर करे सो अहे कर पाए कोई ना पकड़िए किसे थाए। हर जियो सोई करे

बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। मां बिखादी दुष्ट अपवादी ए पुनीत सिंगारे जन्म पवंते नरक पड़ंते इनके कुल उधारे। कोई ना जाने कोई ना माने

मो कुटुंब बिखे रसमाते मिथिया गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास मान मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संग तेल मर्म ना लहे कर कृपा रखे सत्संग नानक शरण आहे आसा महला पंजवा ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोती न लालन नह नहा नही राजन पागन हुकुम न साधन किश किश न चाही चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवा गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईत ऊत कड़ कट तू ही मोहना कारण करना तारण करना एक सोयना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवा हर घर नाम अमोला ओ सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक ओ हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत निभागे ठाकुर आयो आहे हरहाओ नाम पदार्थ हुए सकारत हृदय चरण बसागे

आया सेवक माया गौन रस रस गावे एक है अस दर्श ते अस आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम ते आवो हृदय बसाओ जिबन को नाही प्रसरणी आएगे सर्व फल पाई है सगले दुख जाही जीन को दाता पुरख बेदाता नानक कट कट आही आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम ते आवे सर्व फल पावे सो जन सुगिया हुआ राज कहावे हो कर्म कमावे बाध्यो नलनी प्रंसुआ कहो नानक जिस सतगुर केटिया सो जन ने चलतिया आसा महला पंजवा कर चौदवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओह निहो नवेला अपने प्रीतम सिंह लाग रहे रहाव जो प्रापावे जन्म न आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत प्रचय प्रसंग मिलीजे यो मन दीजे नानक नाम मिले अपनी दया करो आसा महला पंजवा मिल राम प्यारे तुम बिन तीरज को ना करे रहाओ सिमरत शास्त्र बहु कर्म कमाए पर तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संजम कर थाके नानक साध शरण प्रभु संग वस आसा महला पंजवा तार पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद विकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठारियो तही कर जावे लोभ विखिया विखे लागे हर विदचित दुखाही खिर पंगना के मान माते असुर जाने नागी रहाओ वेद सतर जन पुकारे सुने नाही डोरा निपत बाजी हार मुका पछतायो मन पोरा ध्यान सगल गैर वजे परया दीवान लेखे ना परे जे कार्ज रहे उल सोए काम न करया ऐसो जग हुए गुरे दिखायो तो एक कीर्त गाया मान तान असयान सर नानक आया आसा महला पंजवा बापार गोविंद नाए साध संत मनाए प्रे पाए गुण गाए पंच नाद तूर बजाए रखाओ कृपा पाए सह जाए दर्शाए अबरत्या गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सह जाए मन धान पाए सब तजी मन की काम करा चेर चेर चेर चेर पया मन बहुत प्यास लागी हर दर्शनों दिखावो मुझे तुम बतावो नानक दीन शरण आए गल लाए आसा महला पंजवा।

कौन सो मन की लोभ ग्रस्यो दसू दिस तापत आसा ले जो तन की रखाओ सो के हेत बहु दुख पावत सेव करत जन जन की द्वारे द्वार स्वान ज्यो डोलत नै सुध राम भजन की मानस जन्म अकार चकोवत लाजन लोक असन की नानक हर जस क्यों नहीं गावत उमत बिना से तन की अराग अस महला पहला अष्टपदिया हर दूजा एक ओंकार सदगुर प्रसाद उत्तर अवखट सरवर नहावे बके न बोले हर गुण गावे जल आकाशी सुन समावे रस सत चोर मारस पावे ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे पार पुर तारहिया सब ठोरे अरहाओ सच ब्रत नेम न काल संतावे सदगुर शब्द क्रोध जलावे गगन निवास समाध लगावे पारस परस परम पद पावे सच मन कारण तत् बेलोवे सुबर सरवर मैलन थोवे जैसे उराता तै सो होवे आपे करता करे सो होवे गोर है शीतल अग्न बुझावे सेवा सुरत बेपूत चढ़ावे दर्शन आप

मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृप्तस खोजत पाओ सहज हरे हरहाओ काम क्रोध मन मोह शरीर लब लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नामन साच पछाणे अंतर की गत गुरमुख जाने साज शब्द बिन मैल ना पछाणे निरंकार में आकार समावे अकल कला सच साच टिकावे सोनर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम स्या सुखदाता अनदन बाणी नामे राता मेरा प्रलाए ता को लागे होमे मारे सब दे जागे ऐथे उथे सदा सुख आगे मन चंचल बिद ना ही जाने मन मुख मैल शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे हर जू आगे करी अरदास साधु जन संगत हुए निवास।

नीत नीत कर बंधिए जे रहना होई, पिंड पवे जीव चरसी जे जाने कोई, ओही ओही क्या करो है होसी सोई, तुम रोवोगे ओसनो तुमको कौन रोई, धंधा पिट्यो पाई हो तुम कूड़ कमावो, ओ ना सुनी कथी तुम लोक सुनावो, जिते सुत्ता नानका जागाए सोई, जे कर बूझे अपना ता नींद ना होई, जे चलदा ले चलिया केश संपे नाले, ता तन संचो देख के बूझो बिचारे, वंज करो मसूद लहो

तनी साचा मुख नाम रखाओ। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मांगे हृद सिद्ध, मैं एक नाम ना विसरे साचे गुर बुद्ध। जोगी पोगी कापड़ी क्या पवे दिसंतर।

पावे, मनमुख सच ना पीजई, कूड़ कूड़ गड़ावे। लालच छोड़ो अंधे हो, लालच दुख पारी, सचो साहे मन वसे होमे बिखमारी। दुबदा छोड़ कवाटड़ी मूसो गे पाई, अहिंस नाम सलाई है सतगुर सरनाई। मनमुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका, जल में के तारा किए आप अंतर सूका। हर का नाम निधान गए पूरे गुर दिया, नानक नाम न विसरे मत अमृत पिया। आसा महला पहला चले चलन हार, वाट वटाया तंद पिटे संसार सत ना पाया। क्या पविए क्या टूडिये गुर शब्द दिखाया, ममता मोह सरजया अपने कर आया। अरहाओ सच मिले सच्यार कूड़ ना पाई है, सच्चे सुच तलाए बौड़ ना आई है। मोया कहो क्या रोब रोए ना जान हो, रोबो सच सलाहे हुक्म पछाण हो। हुक्मी वजो लखाए

रात नाम अमोल है, तू उत्तम हो नीच सेवक कांडिया, नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया, आसा महला पहला आमन जाना क्यों रहे, तो मिला होई जन्म मरण का दुख कणो निर्शेषा दोई, बिन नावे क्या जीवना फिट त्रिगच तराई, सदगुर साधना सेवया हर भगत ना पाई, हरहाओ आमन जामन तौ रहे पाइये गुरपूरा, राम नाम तन रास दे बिन से प्रमकूरा, संत जिना को मिल रहे तान तान जस गाए, आद पुरख अपरंपरा गुरमुख घर पाए, नडुए सांग बनाया बाजी संसारा, खेन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा, होमे चौपड़ खेलना झूठे अहंकारा, सब जग हारे सो जने गुर शब्द विचारा, जो अंधले हथ टोणी हर नाम हमारे, राम नाम हर टेक है निद दौत सवारे, ज्यो तू राखे त्यो रहा हर नाम अधारा, अंत सखाई पाया जन मुक्त द्वारा, जन्म मरण दुख मिटे जप नाम मुरारे, नानक नाम ना विसरे पूरा गुर तारे, आसा महला तीजा अष्टपदियां कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

चास तुम्हारे रिस प्राण आधारी ही ताके रूप न जागी लखने क्या कर आख विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर चारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आनी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक हुकम ना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब सच्चा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना हृदय नाम सुमाणी आसा मोहल्ला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन वसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाएगे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिर ममता अगन तृष्णा बुझाई छह दे माता हर गुण गाई विण गुर पूरे कोय न जानी माया मोहे दूजे लोभाणी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तपसार हर जीव मन वसे

सात सैत सुखे सब हाट सा व्यापारी एक थाट जे जिया डन को लय न जगात सगुर कर दीनी तुरकी शाप वखर नाम लड़खेब चिलावो लै लाह गुरम कर आव सदगुर साहो सिख बन जारे पूंजी नाम लेखा साज सुमारे सो वस्ते इत कर

साध संग हर घर जपत निर्मल साची रीत रखाओ दर्शन की प्यास घणी चितवत अनक प्रकार तरो अनुग्रो पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार मन परदेसी आया मिलो साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो नम है रंग जेते माया रंग रस बिरस जाए किन माहे भगत रते तेरे नाम से सुख पुंचे सब ठाए सब जय चल तो पेकी है नेत्र घर को नाओ धर्म तराई सास्यो नेचल पावे ठाओ मीत साजन सुत बंध पर को होत ना साथ एक निवाहू राम नाम दीना का प्रभनाथ चरण कमल भोयत पय लग सागर तरे होते हे पेट्यो पूरा सदगुरु

आए, माया के संगल बंद लया, खखे खुंद कार सा आलम, कार खरीद जिन खर्च दिया, बंधन जाके सब जग बांधया, अवरी का नहीं हुकुम पया, गगे गोए गाये जिन छोड़ी, गली गोबिंद गर्भ पया, ताड़ पांडे जिन आवी साजी, चाड़ नवागे तई किया, कगे काल सेक जे ताले, शब्द गुरु के लाग रहे, बुरा पला जे सम कर जाने, एन बद साहेब रमत रहे, चचे चार विरजन साजे, चारे खानी चार जुगा, जुग जुग जोगी खानी पोगी, पढ़िया पंडित आप थिया, छे छे छाया वर्ती सब अंतर, तेरा किया परम हुआ, परम उपाय भुलाइगे ने आपे, तेरा कर्म हुआ, तिन गुरु मिलया, जजे जान मंगत जन जाच, लग चौरासी तीह पवया, एको लेवे एको देवे, अवर ना दूजा मैं सुनया, झजे चूर मरो क्या प्राणी, जो कुछ देना सो दे रहया, दे दे वेखे हुकम चिलाए, ज्यों जिया घर जक पया, न्यन्ये नदर करे जा देख, दूजा कोई नाही, एको रव रहया सब थाई, एक वसया मन माही, तट टंच करो क्या प्राणी, कड़ी के मौत के उड़ चलना, जुए जमन हारो अपना, पाज पड़ो तुम घर सरना, ठठे ठाण वर्ती तिन अंतर, हर चरणी जिनका चित लागा सही जा निस्तरे, तो प्रसादी सुख पाया, डडे डांप करो क्या प्राणी, जो किश हुआ सो सब चलना, किसे सिरे वो तासु पाव, सर्ब निरंतर रब रहे या, टड्डे टाए उसारे आपे, यूं तुझ पावे तिवे करे, कर कर वेखे उगम चलाए, तिस निस्तारे

तन फिरे मिला हुए स्वामी आप कृपा करे सेजा सुहावी संग तिरके सात सर अमृत परे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानक हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाहो मुंद सहज सलोनड़िए एक प्रेम बेनंती राम मैं मंत्र घर पावे प्रसंग मराती राम ता प्रेम राती हर बेनंती नाम हर के सुख वसे तो गुण पिछाने ता प्रव जाने गुणे वस अवगुण नसे तुझ बाज एक तेल रह ना सक कह सुन ना तीजे नानका प्रयो प्रयो कर पुकारे रसन रस मन पीजे सखी हो सहेलड़ी हो मेरा फिर वणजारा राम हर नामो वणजड़िया रस मूल अपारा राम मूल अमूलो सज कर टोलो प्रभावे ता मुंद पली एक संग हर के करे रलिया हो पुकारी दरखली कारण कारण समरसरी तर आप कार्य सारे नानक नदरी तन सुहागन शब्द अब साधार हम कर साचा सोयलड़ा प्रभ आयड़े मीता राम रावे रंग रातड़िया मन लीड़ा दीता राम अपना मर दिया हर वर लिया क्यों पावे त्यों रावे तन मन पिरे आगे शब्द सुभागे कर अमृत फल पावे बुद्ध पाठ ना पाईए बहु चतराईए पाए मिले मन पाने नानक ठाकुर उम्मीद हमारे हम नहीं लोका।

स्वामी, तिन फल तोट न आवे, तिन जरा न मरना, नरक न परना, जो हर नाम ते आवे, हर हर करे से सूके नाही, नानक पीड़ ना खाए जियो, नाम लैन से सोह है, तिन सुख पल होवे, मन है सेजन जाए जियो, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला पहला, शांत कर तीजा, तू सुन हरना कालिया, ई वाड़गेरा ताराम, बिखबल मीठा चार दिन, फिर होवे ताता राम, फिर होए ताता खरा माता, ना बिन परतापे, ओ जेव सायर दे लहरी, बिजली जिवें चमके, हर बाज राखा कोए नाही, सोए तुझे बिसारिया।

राम विचार सगुर मुझे पूछया पवल बेली रातो सूरज चढ़या पिंड पड़या तेल तामन तातो जाओ मग बादा खाए चोटा शब्द बिन बेता लिया सच कहे नानक चेतरे मन मरे पवरा कालिया मेरे जीड़या परदेसिया किर पवे जिंजा ले राम साचा साय मन मस की फासे जम जा ले राम मछली विशुन्नी नैन रुन्नी जाल बद कपाया संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया पगत कार चित लाए हरस्यो छोड़ मनो अंदेसिया सद कहे नानक चेतरे मन जीड़या परदेसिया नदियां माव शून्या मेला संजोगी राम जुग जुग मीठा विस परे को जाने जोगी राम कोई सहज जाने हर पछाणे सदगुरु जिन चेतया बिन नाम हर के परम पूले पचे मुद अचेतया हर ना भगत नारे साचा से अंत ताही रुन्या सद कहे नानक शब्द साचे मेल चिरीम शून्या एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला तीजा शब्द कर पहला हम करे साचा सोहला साचे शब्द सुहाया राम तान पिर मेल पया प्रभ आप मिलाया राम प्रभ आप मिलाया सच मन वसाया कामन सहजे माती गुर शब्द सीगा।

कहो नानक गुर शब्द सवारी, सफलयो जन्म सवाया, दूजड़े कामण परम पुली, हर वरना पाए राम, कामण गुण नाही, बिरथा जन्म गवाए राम, बिरथा जन्म गवाए, मानमुख एयाणी, औगुणवंती चूरे, अपना सदगुर सेव सदा सुख पाया, ता फिर मिलया हदूरे, देख फिर विगसी अंदरों सरसी, सच्चे शब्द सुभाए, नानक विण नावे कामण परम पुलाणी, मिल प्रीतम सुख पाए, फिर संग कामण जानिया, गुरमेल मिलाई राम, अंतर शब्द मिली, सहजे तप्त बुझाई राम, शब्द तप्त बुझाई अंतर सांत आई, सहजे हारस चाखिया, मिल प्रीत में अपने सदा रंग माने, सच्चे शब्द सुपाखिया, पाड़ पाड़ पंडित मुनी थाके, एकी मुक्त न पाई, नानक बिन भगती जग बौराना, सच्चे शब्द मिलाई, सा तन मन अंध पया, हर जीव मेल प्यारे राम, सा तन हर के रस रसी, गुर के शब्द अपारे राम, शब्द पारे मिले प्यारे, सदा गुण सारे मन मसे, छेद सुहावी जां तेरे रावी, मिल प्रीतम अवगुण नसे, जित कर नाम हर सदा त्याई है, सोहिलड़ा जुग चारे,

तेरा गंढ लागे गुरमंग सदा समाले। यों कहे नानक जय मन तू तामदा तय हर तेरे सदा नाले। सदगुर मिले तावत थम्या ने कर वस्या आए नाम या जे नाम ले नाम रहे सुमाए। तावत थम्या सदगुर मिले दसवां द्वार पाया तिथे अमृत भोजन सहित तुन उपजे जित शब्द जगत थम रखाया। ते अनेक वाजे सदा अंध सच्चे रहा सुमाए। यों कहे नानक सदगुर मिले धारत थम्या निकर वस्या आए। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण मन हर जी तेरे नाल है गुरमति रंग मान। मूल पछाणे ता सो जाने मरण जीवन की सोझी होई गुर प्रसादी एको जाने ता दूजा पाओ ना होई। मन सांत आई वजी वधाई ता होआ परवान। यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण मन तू गर्ब अटिया गर्ब लगे आ जाहे माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाहे। गर्ब लागा जाए मुगद मन अंत गया पछतावे अहंकार सना रोग लगा बिरथा जन्म गवावे। मनमुख मुगद चेते नाही अगे गया पछतावे। यों कहे नानक मन तू गर्ब अटिया गर्ब लदिया जावे। मन तू मत मान करे के हौ खज जानदा गुरमुख निमाणा हो। अंतर अज्ञान हौ बुद्ध है सच शब्द मलख हो। हो निमाणा सतगुरु अगे मत किश आप लखावे। अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावे। सतगुर के पाणे करे कार सतगुर के पाणे लग रहो। यों कहे नानक आप छड सुख पावे मन निमाणा होए रहो। तन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया सो सो चित आया मां आनंद सहज पया मन तन सुख पाया। सो सो चित आया मन वसाया अवगुण सब विसारे जांच पाणा गुण प्रगट होए। सतगुर आप सवारे सेजन प्रवान होए जिन्नी एक नाम दिड़या दुतिया पाओ चुकाया। यों कहे नानक तन सोवेला जित मैं सतगुर मिलिया सो सो चित आया। एक जंत परम फुले किन सह आप फुलाए दूजे पाए फिरे होमे कर्म कुमाए। किन सह आप फुलाए कुमार्ग पाए इनका किश ना वसाई। तिन की गत अवगत तू है जाने जिन ए रचन रचाई। हुगम तेरा खरा पारा गुरमुख किसे बुझाए। यों कहे नानक क्या जंत विचारे जा तुझ परम फुलाए।

मय प्रभ करमय सुमरत अगत अपार निर्मल। सुनो स्वामी बिनु एहो हर जोड़ नानक दान मांग जन्म मरण निवार ले हो। अपराधी मत हीन निर्गुण अनाथ नीच सर कठोर कुलहीन व्याप्त मोहकीच मल परम कर्म अंग ममता मरण चीत ना आवे। बनता विनोद आनंद माया अज्ञानता लपटावे किसे जोबन बदे जरुआ दिन हारे संग मीच। बिनवंत नानक आस तेरी सरण साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लगत रहो ते संग मीठे भोग सोना परमत पार अगन ते आयो बो परदेसे तायो। आपोड तारी प्रमुरारी सर्व सुख रनायो रखन हारे प्रप्यारे मुझ ते कछु न होआ हो ना। सुख सहज आनंद नानक किरपा तेरी तरे पौन नाम तारीख उधारे भगते संसा कौन। जेन केन प्रकारे हर हर जस नु श्रवन सुन श्रवण बानी पुरख ज्ञानी मन निधान ना पावगे। हर रंग रते प्रभिधाते राम के गुण गावगे बजद कागज बनराज कलमा लिखन को जे होए पवन। बेअंत अंत ना जाए पाया गई नानक चरण शरण आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान ताकि शरण गही। निरपो पए प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुमीत सुरजन इष्ट बंध पजाणिया। गए कंठ लाया गुर मिलाया जस बेमल संत वखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही। प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप पए। राम नाम और हार बेके दिवस गए गत परम मोह विकार बिनसे जोन आमन सब रहे। अग्न सागर पए शीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय। नानक नाम त्याए पूर्ण सा संग पाई परम गते जय देखो ते संग एको रब रहे। घड़ घड़ वासी आप विरले किने लया जलसल मैयल पूर पूरन कीड़ खत सुमान्या। आद अंते मसोई गुर प्रसाद दी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण जन कहया। सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नान करा रहया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे। चरण कमल संग प्रीत कलमल पाप टरे दुख पुग दर दर नाठ प्रगट मग दिखाया। मिल सा संगे नाम रंगे मल लोहड़ी द पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल समूह सब तरे। दिन सरैन आनंद अन दिन

बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज सुमाणी सुख सोय लड़े हर गामन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवसे आए सहज पाए सगल निध प्रा पागे बिनवंत नानक सरण।

ताप चितवो चितनाथ, चितवो चितनाथ रे रख ले वो शरण अनाथ रे। मिल चाओ चाईले प्राण, सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान हे मन लब्ध गोपाल ज्ञान हे। जाचक जन राखत मान, प्रामाण पूर्ण दुख बदीरन, सगल इश पूजंतिया, हर कंठ लागे दिस भागे, मेरे नहा सेज सुहंतिया। प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी, सगल करमल पए खान, बिनवंत नानक मेरी आस पूर्ण, मिले श्री तार गुण निधान। एक ओंकार सत नाम।

भेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड है विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद विजोग विस्माद पुख विस्माद भोग विस्माद सिवत विस्माद सालाहा विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरे भाग महला पहला कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पातालीं आकाशी कुदरत सर्ब आकार कुदरत वेद पुराण कुतेबा कुदरत सर्ब विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्ब प्यार कुदरत जाति जैसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौ

पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना की लिखिया आवन जान नानक मती मिथिया कर्म सच्चा नीसान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देत मिले सच ता तिनी सच कमाया सदगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया। श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लगी है पढ़ पढ़ परिये साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिये खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल होर हो में चखना चाख महला पहला लिख लिख पढ़िया ते

ताग, तिनकर ब्राह्मण पूरे नाद, ओना पे आवे ओई साध, कूड़ी रास कूड़ा वापार, कूड़ बोल करे आहार,

हाथ शुरी जगत का साई, नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण, मलेश तान ले पूजे प्राण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर कसे न जाना, देख चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, यो अन्न असाडा फिटे, तान फिटे फेड़ करेन, मन झूठे चुली परेन, कहो नानक सच त्याई है, सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी, चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेड़ चलाएंदा, आपे दे वड़े आईया, आपे ही कर्म कराएंदा, वड़ो वड़ा वड़ मेदनी,

करना कियो कर आपे ही तै तारिये देखे कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनो वसारी है आपन हथी अपना आपे ही का सवारी है श्लोक महला दूजा एक ने ही आस की दूजे लगे जाए नानक आस कंडी है।

तपि सन्यासी बहु तीर्थ प्रमना लुंजत मुंजत मोन जटा तार अंत तऊ मरना ताते सेवियले राम ना रसना राम नाम हित जाके कहां करे जमना अरहाओ आगम निर्गम ज्योतक जाने बहु बव्या करना तंत मंत्र सब औखद जाने अंत तऊ मरना राज भोग अरशद्र सिंहासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुभाष चंदन अंत तऊ मरना वेद पुराण सिमर सब खोजे कहू ना उबरना कहो कबीर यो रम में जंपो मेट जन्म मरना।

हंस अकेला जाई। कहेत कबीर सुनो रे संतो, पै सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है,

एक तो के सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया, हर का बिलोवना बिलोबो मेरे पाई, सहज बलोबो जैसे तत न जाई।

फिर पछताना बिरध पायो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भोजंग बलयो अरहाओ चूके सरवर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुग्ध फिरे चरण शीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे जेवा बचन शुद्ध नहीं निगसे ताबरे तर्म की आस करे

साखी शब्द सुरत नहीं उपजे, खेंच ते सब लीना, श्रवण विकल पय संग तेरे, इंद्री का बल थका, चरण रहे कर टर्क परे है, मुखो ननक सह बस, थाके पंच दूत सब तस्कर,

आस बड़ पाग हमारा तुर नार मुनजन कौतक आए कोड़ ते तीस उजाना कह कबीर मोए ब्याए चले हैं पुरख एक भगवाना आसा साज

करे लड़ाई माया सद मतवारी, बड़े पाई के जब संग होती तब हो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को चगर जगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बाध्या, मैं राम रमत सुख पाया।

छोड़ परम निधान बाबा माया मोहित कीन, जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाओ। नैन देख पतंग उर्ज पसना देख आग, काल पास ना मुग्ध चेत कनक का मन लाग, कर विचार विकार परहर

गीरा प्रगट पयो जब गुर गमदिया दिखाई आसा पहली क्रूप कुजात कुलखनी सौरे पेय बुरी आपकी स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी पली सरी मोई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ कौ कबीर जब लौरी आई बड़ी का सुहाग टरे हो लौरी संग पई।

संत की संगत, संत कथा रस, संत प्रेम माजे, दीजे देवा देव रखाओ। संत आचरण संत चो मार्ग, संत च ओलग ओलगणी। और एक मांगो भगत चिंता मन, जनी लखावो असंत पापी सन। रविदास पणे जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही। आसा तुम चंदन हम इरंड बापरे, संग तुम्हारे बासा। नीच रूख ते ऊज पए है, गंध सुगंध निवासा। माधव सत संगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम्हें उपकारी। रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपील, हम परे जस कीरा। सत संगत मिल रही है माधव,

निमत नाम दियो दूध पी आया तौ जग जन्म संकट नहीं आया। ज्ञान रविदास राम रंग राता क्यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुत्र कैसे नचत है देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है रहाओ। जब कछ पावे तब गर्व करत है माया गई तब रोमन लगत है। मान बज क्रम रस कसे लुभाना बिनस गया जाए कहूं समाना। कहे रविदास बाजी जग पाई बाजी गर सौ मोहे प्रीत बन आई। आसा बाणी भगत धन्ने जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रामत फिरत बो जन्म बेलाने। तन मन तन नहीं तीरे लालच बिख काम लुभ राता मन बिसरे प्रभ हीरे। अरहाओ बिख बल मीड लगे मन बौरे चार विचार न जानिया गुणते प्रीत बड़ी अनपांती। जन्म मरन फिर तानिया जुगत जान नहीं रिदे निवासी। जलत जाल जम फंद परे बिग पर संच परे मन ऐसे। परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया। ध्यान मान मन एक मये प्रेम भगत मानी सुख जानिया। तृप्त अगाने मुक्त पये जोत समाए समानी जाके असली प्रभ पहचानिया। तन्ने तन पाया तरणी तार मिल जन संत सुमानिया। महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद संग।

माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई पुतकारी ओ कर कर सुनिया हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगता मैं गनिया ए विद सुन के जट रो उठ भगती लागा मिले परतख गुसाइया तन्ना वडभागा रे चित चेतस की ना दयाल दमोतर बेबे न जानस कोई जे तावे ब्रह्मंड खंड को करता करे सोई अरहाओ जननी केरे उदर उदकमै

पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही पाखण कीट गुप्त होए रहता ता चो मार्ग नाही कह तन्ना पूर्ण ताहु को मात्रे जी डराही आसा सेज फरीद जियो की बाणी एक ओंकार सदगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन से ही सच्या जिन मन होर मुख होर ते कंडे कर।

निमखन बिसरो तुमको हर हर सदा पजो जगदीश अरहाओ ता गुरु तुमको होए दयाल संत संग तेरी प्रीत तापुड़ पात परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनंद अनंता रंग तुमासा पूर्ण आसा तवे न व्यापे चिंता पवर तुम्हारा ओ मन होवो हर चरणा हो कौला नानक दास उन संग लपटायो।

आपन हाथ मतात सियानप कहू कामना आत जो अनरूप्यो ठाकुर मेरे होए रही ओ बात रहाओ देश कमामन तन जोरन की मनसा बीचे निकसे सास लश्कर नेब खवास त्यागे जंप ऊठ सिदास होए अनन महर की दृढ़ता आपस को जानात जो अनिंद निंद कर छोड़ो

कल्याण आनंद रूप होई है। उबरे बाल गोपाल अरहाव मिलवर नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवां माल पिता भाई सुध बंधप।

साध संग नानक दर्श पायो बिनसो सगल नेहोरा गुजरी मोहल्ला पंजवा आल जाल प्रमोत जावे प्रसे ती रंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कबहू जाई हराओ करत करत अनकबो पक।

दुख अनहेरा पै बिनासे पाप गए निखूट हर हर नाम की मन प्रीत। मेर साध बचन गोविंद ते आए महान निर्मल रीत रहाओ जाप ताप अनेक करणी सबल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे पय पूर्ण काम सास सासना बिसर कब हूँ।

आराध श्री तर सबल मूर्त करण कारण जोग गुण रमण शरमण अपार महिमा फिर ना होत बियोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण

पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा ना हो रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वडे भाग लिव लागी। कबल प्रकाश पए सत्संग दुरमत बुद्ध त्यागी। आठ पैर हर के गुण गावे सिमरे दीन दयाला। आप तरह संगत सब उधर बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्रभु स्वामी ओत पोत प्रभु साथ। शरण प्रयो नानुता तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदियां महला पहला कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियल बबरजत चोरी तावे। त्रेद समार रखे।

परे गुर शरण तुम्हारी मैं अवर ना दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो आद जुगा सिखाई। ऐ जी रखो पैज नाम अपने की तुझ की स्यों बने आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो किस रहे ना दिसै

नीच ना मध्यम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बिजोग विसर्जित रोग भाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की सदगुर वाक हिरदे हर निर्मल ना जमकान न जमकी बाकी रहाओ हर गुण रसन रवे प्रसंग जो तु पावे सहज हरी बिन हर नाम बिरथा जग जीवन हर बर नेफल मेक करी ऐजी खोटे ठौर नहीं घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करे प्राभक्ष न मिटे नित नित चिड़े सुवा।

आहे साहे सदा संभालिए आपे बगसे करे रजाए से ही नच है जोत भाव है जे गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पा।

क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरने वार धरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माय गुर ज्ञान हरद मंत छेद अंग बुद्ध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त

कायागढ़ पीतर कूड़ कसत अभवानी परम पूले नदर ना आवनी मानमुख अंध अज्ञानी उपाय किते ना लभनी कर पेख थके पेखवानी गुर शब्दी खोलाइन हर नाम जपानी हर जीव अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी श्लोक महला तीजा वाह वाह करते हैं रैन सुख विहाए वाह वाह करते हैं सदा आनंद होवे मेरे।

तू सबना का खसम सब तेरी शाय है। सलोक महला पंजवा। नदी तरंदड़ी मैड़ा खोज ना खुंभ मंज मोहब्बत तेरी तौ से चरणी मैं।

पौड़ी सूर वीरवरियाम किने ना होड़िए होशतानी हाठ पंचा जोड़िए दस नारी अवधूत देन चमोड़िए जिन जिन लैन रलाए इहो इना लोड़िए तै गुण इनके वस किने ना मोड़िए परम कोट माया खाई कौ कित बिद तोड़िए गुरपूरा आराध बिखमदल फोड़िए हाँ इस अगे दिन रात रहा कर जोड़िए श्लोक महला पंजवां केलबग सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोड़ केले सा उपजे

बारक कैसे जीवे रग राई, तन ना बोना सब तजो है कबीर। हर का नाम लिख लियो शरीर रखाओ, जब लग तागा बाहो बेही, तब लग बिसरे राम स्नेही, ओछी मत मेरी जात जुलाह। हर का नाम लयो मैं लाह, कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमारा इनका दाता एक रग राई। गुजरी श्री नाम देव जी के पदे कर पहला एक ओंकार, सदगुर प्रसाद जो राज देहे ता कमन बढ़ाई, जो पीख मंगावे ता क्या कड़ जाई, तू हर पाज मन मेरे पद निर्वाण, बौर न होए तेरा आमन जान रखाओ, सब ते उपाई परम फुलाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई, सदगुर मिले ता सहसा जाई, केस हो पूजो दूजा नदर न आई, एक पाथर की जे पाओ दूजे पाथर करिए पाओ, जे ओ दियो ता ओ पी देवा, कहे नाम दियो हम हर की सेवा, गुजरी कर पहला।

निर्गुण निबाणी अनाथ बिनवै मिलो प्रभ कृपा निधे। प्रम पीत खोइये सहज सोइये प्रभ पलक पेखत नव निधे। गृह लाल आवै महल पावै मिल संग मंगल गाइये। नाक पैम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाइये। संतन कै प्रसाद हर घर पाया राम। इश पुनी मन शांत तप्त बुझाया राम। सबला सो दिनस रहने सुहावी अंध।

तिर पवन पूर पूरन कीमत कहन न जाई। बिनवंत नानक आप जाने जिन ए बंत बनाई। बिहागड़ा महला पंजवा खोजत संत फिरे प्रभ प्राण अधारे राम। तान तन खीन पया बिन मिलत प्यारे राम। प्रा मिलो प्यारे मया तारे कर दया।

या राम तुग सहज आनंद विरोध सदगी गुण गोपाल नित गाई है। पज साध संगे मिले रंगे बौड़ जोन ना ताई है। गय कंठ लाए सह सुखाए

तू मन लह सो जन साबास तव तेरा चोज वर्तदा दुख सुख तुझ पास। सलोक महला तीजा गुरमुख सच्चे पाम दे दर सच्चे सच्यार साजन मन आनंद है गुर का शब्द विचार अंतर शब्द वसाया दुख कटिया।

राम राम करता सब जग फेरे, राम न पाया जाए। अगमे गोचर अत वड्डा, अतुल न तुले आ जाए। कीमत कने न पाई, किते न ले आ जाए। गुर कै शब्द भेदया, एन बिद वसया मन आए। नानक आप अमेओ है, गुर कृपा ते रहया समाए। आपे मिलया मिल रहे, आपे मिलया आए। महला तीजा, ए मन यो तन नाम है। जित सदा सदा सुख होए, टोटा मूल न आवई, लाहा सदगी होए।

नानक गुरमुख पाईए जा को नदर करे पौड़ी आपे सब कट अंदर आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जहर जो शक्ति गोबार कर वर्त्या सुनहर उथे वेद पुराण ना सास्ता आपे हार नर हर बैठा ताड़ी लाए आप सब दूगी बाहर अपनी मित आप जान।

हिंदू मूले भूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार, ओए जा आव डुबे तुम कहां तरनहार। पौड़ी सब क्यों तेरे वस है, तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कह पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज्य राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो। श्लोक महला तीजा सब किस हुक्मे आमदा, सब किस हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कुमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनु कृपा करे रजाए। महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए, जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए, ए जोगी की नगरी सब को वस, पेखी जोग ना होए, नानक ऐसा विरला को जोगी जिस कट प्रगट होए। पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सुखम पालिए आपे पासार, आप एकाती होए रहे आपे वड़ परवार, नानक मंगे दान हर संतारे नार, होर दा तार ना।

कामन जेथी है जे मन धागा होए मानक मुल ना पाई है लीजे चित परोए राव दसाई ना जुला आखा अमड़ी आस तैसे नाल अकूणा क्यों थी वे करवास नानक एक की बारा दूजा ना ही कोए तैसे लगी दे रहे की सोरा वे सोए वढ़ांस महला पहला कर दूजा मोरी रुण चुन लाया पैने सावन आया तेरे मुंद कटारे जेवड़ा तिन लोभी लोभ लुभाया तेरे दर्शन विट्टो खनिए वन्या

आए न सका तुझ कन प्यारे, तेज न सका कोए, आओ सुभागी नींदड़िए, मत सो देखा सोए, तय साहब की बात जे आखे, कहो नान क्या दीजे, शीश वडे कर बैसन दीजे, विण सिर सेव करीजे।

आद पस्तस होए गोरमुख अंतर सखाई प्रभ होए गोरमुख जिसनु आप करे सो होए गोरमुख आप वडाई देवे सोए गोरमुख शब्द फद करनी सार गोरमुख नानक परवारे साधार वढ़ांस महला तीजा रसनहार साद लगी सह सुपाए मन तृप्त्या हर नाम त्याए सदा सुख सचे शब्द विचारी अपने सदगुरु विटो सदा बलिहारी अरहाओ अखी संतोखियां एक लिव लाए मन संतोखिया दूजा पाओ गवाए दे शरीर सुख होवे शब्द हर नाए नाम परम हिरदे रहा सुमाए नानक मस्तक जिस वड़पाग गुर की बाणी सहज बैराग वढ़हंस महला तीजा पूरे गुर ते नाम पाया जाए सत्य शब्द सच सुमाए।

आए, निर्मल नाम से मन आए, पर में भूला फिरे संसार, मर जन में जम करे खुवार, नानक से बड़ भागी जिन घर नाम के आया, गुर प्रसादी मन वसाया, वढ़हंस महला तीजा, हम में नावे नार विरोध है, दोना वसे एक ठाए, हम में जो सेवा ना हो वही कामन बिरथा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मने ता हर मिले ता विचो हम में जाए रखाओ, हम में सब शरीर है, हम में ओपत होए, हम में वड़ा गुबार है, हम में विच बुझ न सके कोए, हम में विच भगत ना हो वही हुक्म ना बुझिया जाए, हम में विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले हम में गई ता सच वसया मन आए, सच कमावे सच रहे सच्चे सेव समाए, वढ़हंस महला चौथा कार पहला एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद सेज एक को प्रभ ठाकुर, गुरमुख हर रावे सुख सागर।

नेतन सेव करी हर जन की जो हर घर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सदगुर पूरा नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम त्यावा। गुर सदगुर पासो हर गोष्ठ पूछा कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित

सो हर घर सदा संभाले, सो हर घर नाम सदा सदा संभाले। जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया, नानक हर जान हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया। वढ़हंस महला।

कोट कोट लख तावे एक तिल ताका मैल न पावे सुहावी कौन सो वेला जित प्रा मेला रहाओ लाख भगत जा को आराध लाख तपीसर तब की साध

सार संघर अमृत पीजे ना जू मरे न कबहू चीज वड़भागी गुर पूरा पाईए गुर कृपा ते प्रभु त्याई ऐ रखाओ रतन जवाहर हर मान कलाला सेमर सेमर पा पय निहाला जत कद पेखो साधु सरना हार गुण गाए निर्मल मन करना घड़ घड़ अंत मेरा स्वामी उठा नानक नाम पाया प्रतूठा वढ़हंस महला पंजवा।

अमृतसर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मने लागा, दुख डेरा ठाया, सुख मन में आय बसया, जाम तय फुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप यो पाया, ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नहीं पाए झगड़ा स्वाम सेती आप मनावना, जिस नार संगत कर

बीज मन अंदर सत्य शब्द सुखाए, हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम। गुरमति मन कर वसया सत्य शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक भागो सत बैरागो साचर ते विचारी। ना बिना सब जग बौराना सब देखो में मारी, साचे शब्द लाग मत उपजे गुरमुख नाम सुहागो। नानक शब्द मिले पो पंजन हर आवे मस्तक भागो, खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडया ई राम। गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम, हुक्म मिलाई सह समाई गुर का शब्द अपारा। सच्ची वडयाई गुर ते पाई सच सवारण हारा, पाओ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई। कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर, हुक्मे रहया सुनाई वढ़ांस महला तीजा। मन मेरेया तू सदा सच समाल जियो, अपने कर तू सुख वसे ओए न सके जम काल जियो। काल जाल जम जोए न सके साचे शब्द लिवलाए, सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रखाए। दूजे पाए परम विभूति मन मुखमोही जम काल, कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाल। मन मेरे अंत तेरे निधान गए बाहर वस्त ना पाल, जो पावे सो पूछ तू गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर घर नाम सखाई, मनमुख अंदले ज्ञान में गुणे दूजे पाए खुवाई। बिरनावे को छूटे नाही साबादी जमकाल, नानक अंतर तेरे निधान है तू बार वस्त ना पाल। मन मेरे जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा, सतगुरु सेवने अपना अंतर शब्द अपारा। अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौन दपाई, मन माया मोवे आपे दू संतापे दूजे पद गवाई। होमे मार सच शब्द समाने सचर ते अदकाई, नानक मानस जन्म दुलंब है सदगुर बूझ बुझाई। मन मेरे सदगुर सेवने अपना से जन्मड भागी राम, जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम। से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया, मत नेचल अत गूढ़ी गुरमुख सहजे नाम खाणिया। एक कामन हितकारी माया मुहे प्यारी, मनमुख सोए रहे अपागे। नानक सहजे सेवे गुर अपना से पूरे वडभागे। वढ़ांस महला तीजा रतन पदार्थ वणजी है सतगुर दिया बुझाई राम। ला लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम, गुण में गुणी समाए जिसे आप बुझाए। ला भगत सह सारे बिन भगती सुख ना होई, दूजे पद खोई गुरमत नाम आधारे। वखर नाम सदा लाभ है जिसनु एत वापार लाए, रतन पदार्थ वणजिए जा सतगुर दे बुझाए। माया मोह सब दुख है खोटा यो वापार राम, कूड़ बोल बिकामणी बहु वदे विकारा राम। बहु वदे विकारा सहसा यो संसार बिन नावे पद खोई, पढ़ पढ़ पंडित वाद वकाने बिन बूझे सुख ना होई। आमन जाना कदे ना चूके माया मोह प्यारा, माया मोह सब दुख है खोटा यो वापारा। खोटे खरे

आपे बगसे सोई गुरप्रसादी आप गवाई है नानक नाम पद पाई आप करे किसे आखिए होर करना किशु ना जाई वढ़ांस मोहल्ला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा व्यापार राम गुरमती हर नामन जिए आत्मोल अफारा राम आत्मोल अफारा सच व्यापार लगे वड़भागी अंतर बार भगती राते सच नाम लिव लागी नदर करे सोई सच पाए गुर के शब्द विचारा नानक नाम रते तिन ही सुख पाया सच के व्यापार होमी माया मैल है माया मैल भरी जय राम गुरमती मन निर्मला रसना हरस पीजे राम रसना हरस पीजे अंतर पीजे साज शब्द विचारी अंतर खूटा अमृत भरिया शब्द काड़ पिए पनेगारी जिस नदर करे सोई सच लागे रसना राम पीजे नानक नाम रते से निर्मल होर हमें मैल पहीजे पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पे करे पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागे

सदगुर देख सरसे राम, हर नामो हर नाम दृढ़ाय, जप हर हर नाम विगसे राम, जप हर हर नाम कमल पर गसे, हर नाम नवंग निध पाई, हम में रोग गया दुख लत, हर सहज समाध लगाई, हर नाम वडाई सदगुर ते पाई, सुख सदगुर देव मन परसे, हों जीवा सदगुर देख सरसे,

ठाकुर मेरे कित मुख तुसा लागी, गुण अवगुण मेरा किशना बिचारिया, बक्सली आखिन माघी, नौंद पाई वजी वधाई।

मन माने गुरके शब्द अपार ए सज्जन मिले ना विछड़े जे आप मेले करतार। एक ना दर्शन की प्रतीत न आईया शब्द न

पौड़ी। तिस गुर को हम वारिया जिन हर की हर कथा सुनाई, तिस गुर को सद बलिहारण जिन हर सेवा बंत बनाई। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू लै छड़ाई।

ब्राह्मणकार जो मनुआसदा सुख वस सहज करे व्यापार अंतर गुर ज्ञान हरतन है मुक्त करा मनहार नानक जिसनु नदर करे सो पाए तो होवे दर्श प्यारा पौड़ी तन तन सो गुरसिख कहिए जो सतगुर चरणी जाए पया तन तन सो गुरसिख कहिए जे हर नामा मुख राम कहया तन तन सो गुरसिख कहिए जिस हर नाम सुने मन अंद पया तन तन सो गुरसिख कहिए जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया तिल गुरसिख कौ फाउ सदा नमस्कारी जो गुर कै फाणे गुरसिख चलिया श्लोक महला तीजा मन हड़के ने न पायो सब थके कर्म कमाए मन हड़के कर परम दे दुख पाया दूजे पाए रिद सिद्ध सा मोह नाम नवस्ते मन आए गुरसेवा ते मन निर्मल होवे अज्ञान अंधेरा जाए नाम रतन हर प्रगट होआ नानक सहज समाए महला तीजा शब्द साधन आयो नाम न लगो प्यार रसना फिता बोलना नित नित हुए खुवार नानक किरद पय कमावना कोई न मेटन हार पौड़ी तन तन सतपुरख सदगुरु हमारा जित मिले हम को सांते आई तन तन सतपुरख सदगुरु हमारा जित मिले हम हर भगत पाई तन तन हर भगत सदगुरु हमारा जेकी सेवा ते हम हर नाम लिवलाई तन तन हर ज्ञानी सदगुरु हमारा जिन वैरी मित्र हम कौ साध समधिट दिखाई तन तन सदगुरु मित्र हमारा जिन हर नाम स्यो हमारी प्रीत बनाई श्लोक महला पहला कर ही मुंद वदेश पेर ने चूरे संभाले मिलदियां टेल

निर्मल नाम जपो सदगुरमुख अंतर की गत ताही जियो। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्याग हो सदगुर बचनी फल पाही जियो। जो पावे त्यों राखो हर जियो जन नानक शब्द सलाही जियो। सोरठ महला पहला पंच बदे

मन रे समझ कवन मत लागा, नाम सार अनस लूप हन हे पछताए अपागा रखाओ। आपत को हरख जात को रोवे, ए दुसुख ना लेन लागा, आपे दुसुख भोग पुगावे, गुरमुख सु अनरागा। हरस ऊपर अवर क्या कहिए, जिन पिया सो तृप्तागा, माया मोहित जिन इवरस खोया।

मन मेरे गुरबचनी निद पाई ताते सत मैं रहा समाई रहाओ। गुरसाखी अंतर जागी ता चंचल मत त्यागी गुरसाखी का उजियारा ता मिटिया सगल अंधियारा। गुरचरणी मन लागा ता जमका मार्ग भागा

क्रोध अहंकारा। सदा हजूर कविया सब ठाई हृदय नाम अपारा। जो जुग बाणी शब्द पछाणी नाओ मीठा मने प्यारा। सतगुर सेव जे नाम पछाता सफल जन्म जग आया। हार चाख सदा मन तृप्तिया गुण गावे गुणी अगाया। कमल प्रगास दा रंग राता अनखा शब्द बजाया। तन मन निर्मल निर्मल बाणी सच्चे सच समाया। राम नाम की गत कोई ना बूझे गुरमत हृदय समाई। गुरमुख होवे सो मग पछाणे हर रस रसन रसाई। जब तब संजम सब गुर ते होवे हृदय नाम साई। नानक नाम समाले से जन सोहन दर साचे पद पाई। सोरठ महला तीजा दो तुके सतगुर मिले उल्टी पई भाई। जीव

अंडज जेरज सेत उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहु मणिया कर सकती जगत परोए आपे ही सूद तार है प्यारा सूद खिंचे टह ठेरी होए मेरे मन मैं हर बिन अवर न कोए सगुर विच नाम निधान है प्यारा कर दया अमृत मुख चोए रहाओ आपे जल तल सब्त है प्यारा प्रवे आपे करे सोए सबन रिजक समाहां दा प्यारा दूजा अवर न कोए आपे खेल खिलाएं दा प्यारा आपे करे।

तब तप आपे सतगुर आप गए चेला उपदेश करे प्रभ आपे आपे नाउज पाएंदा प्यारा आपे ही जप जापे आपे अमृत आप गए प्यारा आपे ही रस आपे आपे आप सलांदा प्यारा जन नानक हर स्थापे सोरठ महला चौथा आपे कंडा आप तराजी प्रभ आपे तोल तुलाया आपे सौ आपे बणजारा आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर घर त्याए सुख पाया हर घर नाम निधान।

प्यारा आपे शब्द समाहा, आपे लिखने आप लिखारी, आपे लेख लिखा। मेरे मन जप राम नाम ओमाहा, आनदन अनद होवे वडभागी, लै गुर पूरे हर लाहा रहाओ। आपे गोपी कान है प्यारा, बन आपे गऊ चराहा, आपे सावर सुंदरा प्यारा, आपे वंश वजाहा।

अंध पया सुख सहज समाणे, सदगुर मेल मिलाई मन नाम जप नाम आराध अनदिन नाम वखाणी। उपदेश सुन सा संतन का ता चूकी कान जमाणी।

आद एक पिता एक के हम बारिक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन दियो दिखाई सुन मीता तूरी कौ बल जाई यो मन तेरा पाई रहाओ पा मलोवा मल मल तोवा यो मन तय को दिशा सुन मीता हो तेरी शरणाई आया प्रा मिलो।

तूं दाता मांगन को सगली दान दे प्रापन खिर मैं अवर खिने मैं अवरा आचरज चलत तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अंध पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरणा संत हमारी ओर सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखे आप पाई।

गुण गावत आराध नाम हर, आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत, संगत साध प्यारी सब बलिहार जाओ प्रभ अपने, जिन पूर्ण पैज सवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उधरे, जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नांग प्रभ अपना, फंद से ती कर आया सोरठ महला पंजवा, प्रभ की सारण सगल पैला थे दुख बिन से सुख पाया, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी,

कर कृपा अपनो कर लीना। मनव से अविनाशी ताको विघन न को लागे, जो सदगुर अपने रखे चरण कमल बसेर अंतर अमृत हरस जाके। कर सेवा सेव प्रव्यापने जिन मन की इच्छ पुजाई, नानक दाता के बलिहार है जिन पूर्ण पैज रखाई। सोरठ महला पनवा माया मोह मगन अंधियार है, देव न

जिसनु कर्म प्राप्त होवे तो जन निर्मल छीवे। बिघन बिनाशन सब दुख नाशन गुर चरणी मन लागा, गुण गावत अजुत अविनाशी आनंदन हारंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए हर की कड़ा सुहेली, आद अंत मद नानक तो प्रभु होवा बेली। सोरठ महला पंजवा पंच पदा, बिन से मोह मेरा अर तेरा, बिन से अपनी तारी संतो या बतावो कारी। जित हो में गर्भ निवारी रखाओ, सर्व भूत पार ब्रह्म करमानिया होवा सगल रे नारी। देखो प्रभु अपने संगे चूके पीत परमारी, औखद नाम निर्मल जल अमृत पाइये गुरु द्वारी। कहो नानक जिस मस्तक लिखया तिस गुर मिले रोग बिदारी।

ए भीतर ते इनको डार हो, अपन निकट बुलावो, अपनी विद आप जनाव हो, हर जन मंगल गाव हो रखाओ। बिसर नाही कहू ही एते, हे विद मन में पाव हो, गुरपूरा फेट्यू वड पागी, जन नानक ते न ताव। सोरठ महला पंजवां, जाके सिमरन सब कछ पाइए, बिरती काल न जाई, ते प्रत्याग अवर कतरा चो, जो समय रहा सुमाई। हर घर सिमरू संत गोपाला, सा संग मिल नाम ते आवो, पूर्ण होवे काला रखाओ। सार संभाले नित प्रतपाले, प्रेम सहित गल लावे, कहो नानक प्रभु तुमरे बिसरत, जगत जीवन कैसे पावे। तोरठ महला पंजवां, अविनाशी जीवन को दाता, सिमर सब मल खोई, गुण निधान भगतन को बरतन, बिरला पावे कोई। मेरे मन जाप गुर गोपाल प्रसोई, जा की शरण पया सुख पाई है, बहुत दुख ना होई रहाओ। वड भागी सा संग परापद, तिन पेट दुर्मद खोई, तिन की तूर नानक दास बांछ, जिन हर नाम हृदय परोई। सोरठ महला पंजवा, जन्म जन्म के दुख निवार, सूखा मन साधार, दर्शन पीड़ित होत निहाला, हर का नाम विचार। मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देव है, काटे जमकी फंदा रखाओ। समर्थ पुरख पूर्ण विधाते, आपे करने हारा, अपना दास हर

गोविंद पेटे गुर गोसाई रहाओ। आया प्रभु दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा, लभदे अपनी पाई ता कते आवे कद जाई। ते साच न्याय नबेरा ऊहा समठा गुर समचेरा, अंतर जामी जाने बिन बोलते आ पछाने। सर्वथान को राजा ते अनहद शब्द अगा।

रामदास त्रुवर नाते तब उतरे पाप कमाते निर्मल होए कर स्नाना गुर पूरे कीने दाना सब कुशल खेम प्रतारे सही सलामत सब थोक उबारे गुर का शब्द विचारे हरहाओ सा संग मल्लाथी पार ब्रह्म पयो साथी नानक नाम त्याया आदि पुरख प्रापाया सोरठ महला पंजवा जिद पार ब्रह्म चित आया सो कर दिये वसाया तो सागर गुर पाया ना सहसा सगल मिटाया हर के नाम की वडियाई आड़ पैर गुण गाई गुर पूरे ते पाई रहाओ प्रभ की अकथ कहानी जन बोले अमृत बाणी नानक दास वखाणी गुर पूरे ते जानी सोरठ महला पंजवा आगे सो गुर दिया पाछे कुशल खेम गुर किया सर्वनिधान सो पाया गुर अपना हृदय ते आया अपने सदगुर की वडियाई मान छे बल पाई संतो दिन दिन चढ़े सवाई रहाओ जी जसा पय दयाला प्रभु ने कर दीने सह सुखाय मिले गोपाला नानक साच पतीने।

शीतला ठाक रखाई विघ्न गए घरनाई। मेरा प्रभु वा सदा दयाला अरदास सुनी भगत अपने की थव जी भया कृपाला रहाओ। प्रभ करण कारण समरथा हर सिमरत सब दुख लाथा अपने दास की सुनी बेनंती थव नानक सुख सुवंती। सोरठ महला पंजवा अपना गुरु त्याए मिल कुशल स्थिति कर आए नामे की वड्याई इस कीमत कह न जाई। संतो हर हर हर आराधो हर आरा सब कुछ पाई है कार सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रलागी सो पाए जिस वडभागी जन नानक नाम त्याया तिन सर्व सुखां फल पाया।

की ओटा जो सिमरै तहकीकत होवै उधरै सगले कोटा रगाओ। संत संग जस गाया इव पूर्ण गर्तन पाया को नानक आ मिटाया।

वैरागर तो बैरागी सबन विद्या मेरी माई अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यों लिवलाई आओ। असंख बैरागी कह बैराग सो बैरागी जे खसमें पावे हिरदे शब्द सदा पै रचिया गुर की कार कमावे एको चेते मनुआ ना डोले तावत वर्ज रखावे सहजे माता सदा रंग राता साचे की गुण गावे मनुआ पौन बिन सुखवासी ना वसे सुख पाई जेबा नेत्र सोच।

दो तुकी तू गुण दातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होए हम पराधी निर्गुणे पाई तुझी ते गुण सोए मेरे प्रीतमा तू करता कर वेख हों पापी पाखंडिया पाई मन तन नाम सेख रहाओ दिख माया चित मोया पाई चितराई पद खोए चित में ठाकुर सच बसे पाई ये गुर ज्ञान सुमोए रूड़ो रूड़ो आखिए पाई रूड़ो लाल चलूल जे मनहर सुम बैरागिये पाई दार कर साच अपूल पाताली आकाश तू पाई कर कर तू गुण ज्ञान गुर विले सुख पाया पाई चूका मनो गुमान जल मल काया मंजिये पाई ही मैला तन होए ज्ञान महार सुनाई गे पाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजिये पाई क्या मांगो क्या देहे पहन नीर पखालिये पाई जल मैं बूढ़े तेहे गुरबिन अलख न लखिये पाई जब बूढ़े पद खोए मेरे ठाकुर हाथ वडाइया पाई जय पावे तय दे बैयर बोले मीठली पाई साच कहे पिर पाए फिर गए बेदी सच वसी पाई अद करही हरनाए हको आखे अपना पाई गुरते बुझे सुजान जो बीदे से उबरे पाई शब्द सच्चा निशान ईदन अदक सके लिए पाई पाव करन चक पाए खेन पल नाम हृदय बसै पाई नानक मिलन सुपाय सोरठ महला तीजा कर पहला ते तुकी।

काल ग्रसव लोग सियाने उड़ पंडित पै चले निरासा मान रे सरयो ना एके काजा पजो ना रघुपत राजा रघाओ बाण खण जाए जोग तब कीनो कंध मूल चुन खाया नादी बेदी सब दी मोनी जमके पटे लिखाया।

अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा। रहाओ बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमासे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, आपने रंग रवे अकेला। कथनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई,

तोरै तो अपन बेडी आवे हो, ऐसो बेडी बन ना सको, सब अंतर सब ठाई हो। गूंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कैन ना जाई हो, बेडी के गुण सुन रीबाई।

राजा राम को रास दे रस अनस बिसरजा ही रहाओ। जान अजान पै हम बावर सोच असोच दिवस जाही। इंद्री सबल निबर विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं। सहित आन अचरित अनकश समझना परे अपर माया।

पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, रहाओ राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा, बंके बाल पाग सिर डेरी, यो तन होए को पसम की ठेरी, ऊंचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी, मेरी जात कमीनी पांत कमीनी, ऊंचा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कहे रविदास तुम्हारा, चमरटा गांठ न जनई, लोग ठावे पन ही, अरहाओ आर नहीं जे तो पो, नहीं रामबी ठाओ रूपो, लोग गंठ गंठ खराबे गुचा, हों वे गंठे जाए पहुचा, रविदास जपे राम नामा, मोहे जमसु नाही कामा, राग सोरठ बाणी भगत भीखन की, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, नैनो नीर बहे तन कीना, भय किस दुधवानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उच्चर, आव क्या

सास मास तब जियो तुम्हारा तुम्हें करा प्यारा। नानक साहिब एव कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे ना देही मेरे साहेबा क्या को कड्डे गहना। नानक बिन वै सोख छिपाइये पुरब लिखे का लहना, नाम खसम का चितन किया कपटी कपड़ कमाना। जाम द्वार जा पड़ चलाया ता चलदा पछताना, जब लग दुनिया रही गई नानक किस सुनिए किस कहिए। पाल रहे हम रहन न पाया जीव ते हम मर रही है। तना श्री मोहल्ला पहला कर दूजा एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए। तप हे आओ जीड़ा बिल लाए फिर जसवारे साचा सोए, तिस विसरे चंगा क्यों होए। हिकमत हुक्म न पाया जाए क्यों कर साथ मिलो मेरी माए। रखाओ वखर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए। लोग बतीने ना पत होए ता पत रह आराखे जा सोए। जै देखा तै रया समाए तुद बिन दूजी ना ही जाए। जे को करे कीते क्या होए जिसनु बगसे साचा सोए। हुन उठ चलना मोत के ताल क्या मो दिसा गुण नहीं नाल। जैसी नदर करे तैसा होए बिन नदरी नानक नहीं कोए। तनासरी मोहल्ला तीजा नदर करे ता सिमरिया जाए। आत्मा द्रवे रहे लिवलाए आत्मा प्रात्मा एको करे अंतर की दुबदा अंतर मरे। गुर प्रसादी पाया जाए हर सुचित लागे तिरकाल ना खाए। रहाओ सच सिमरे होवे प्रगास ताते बिखिया महे उदास। सतगुर की ऐसी वडियाई पुत्र कलतर विचे गद पाई। ऐसी सेक सेवा करे जिसका जीव तस आगे तरे। साहिब पावे सो परवान सो सेवक दरगह पावे मान। सतगुर की मूर्त हृदय वसाए जो इच्छा सोई फल पाए।

आप मुक्त अवरा मुक्त करावे, हर नाम जपे करते सुख पावे, बिन सतगुरु सब मोई बिरलाए, अन दिन दाजे सांत ना पाए, सतगुरु मिले

पाग साच रते अहे निस बैराग क्यों जुग में अमृत साची बाणी पूरे पाग हर नाम सुमाणी सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे पाग प्राप्त होए सबके साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेखे आपे सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही न जाए से जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बगसे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूर्ख मूर्ख मन माहे होमे विच सवकार कमाहे गुर प्रसादी होमे जाए आपे बगसे लए मिलाए बिखिया का धन बहुत अभमान अहंकार डूबे ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत साला ही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर न कोए जिस सच

जो घर सेवे संत भगत तिन के सा पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी अरख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कह न सको।

प्रीत बनयाई बहुचिंत विसारी हर नाम उरतारी नानक हर पय है सखाई तनासरी महला चौथा हर पढ़ हर लेख हर जप हर गाओ हर पौजल पार उतारी मन भजन हृदय त्याय हर हुए संतुष्ट एव पाण हर नाम मुरारी मन जपिए हर जगदीश मेरे संगत साधु मीत सदा आनंद होवे दिन राती हर कीर्त कर बनवारी हरहाओ हर हर करी दृष्टता पयो मन उद्यम हर हर नाम जप्यो गल पई हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए प्रयो है शरण तुम्हारी तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जन सब चाह है हर जीव तेरो नाओ गुर प्रसाद को विरला पावे जिन को रिला लिखिया तुर पाओ जप मन आरामे नाम हर उत्तम काम जो गावे सुने तेरा जस स्वामी औतर के सद बलिहारे जाओ रघाओ शरणागत प्रतपालक हर स्वामी।

जिन जल सुखेत बढ़ायो कमल हेत बिन सुखे पवरा उन मार्ग निकस न पायो। अब मान एक स्यो मोकीना मरे न जावे सदगी संगे सदगुर सबदी चीना रहाओ। काम हिर कुंतर लय फांके ओ।

वो मन छूटे बिरस जाए परमाई, अंदरूप रवे उसा मध्य जल कद पेखो जाई। तुम दयाल किरपाल किरपा निध पतत पामन गोसाई, पोर सूख आनंद राज पाए मुक्ते निमुख बुलाई। जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभु के मन पाई, नाम जपत तृष्णा सा बुझी है नानक तृप्त अघाई। तनहा श्री महला पंजवां जिन कीने वसे अपने त्रै गुण

साल प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याल तब हुटो अरहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोहे ओ डीठी ऐसी ठगौरी पाए पुलावे मन सबके लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेल्यो दुआ किसी वाद काड़ किसी पै सगले लर लर मुआ ओं बलिहारी सतगुरे अपने जिन यो चलत दिखाया गूजी पाए जले संसारा भगत ना व्यापे माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काट।

खंडो अनकबीरी समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुमकी सजन सुहेले रखो रखन हार दयाला नानक करके गोले तनासरी महला पंजवा पूजा वर्त तिलक इस नाना

दुतिया पाओ निवार, बंधन काढ़ लेओ अपने कार, कभू न आवे हार। तेरी शरण पया हो जीवा, तू सुमरत पुरख मेहरबान, आठ पहर प्रभु को आराधी, नानक सद कुरबान। राग तनासरी महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। हा हा प्रभ राख ले हो, हम ते किशु न होए मेरे स्वामी, कर कृपा अपना नाम देहो। हराओ अगर कुटुंब सागर संसार, परम मोह अज्ञान अंधार, ऊंच नीच सुख दुख, त्रास नाही तिसना भूख, मन बासना रज बिखे ब्याद, पांच दूध संग महा असा।

चरण गए प्रव्यापने सुख पायो दिन रात तनासरी महला पंजवा पर हरना लोभ चूड़ निंद ए भी करत गुदारी मृत्यु आस मिथ्या मीठी ए टेक मने साधारी सागत की आवरदा जाए बिरतारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवाव काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़ अंध नान प्रकाड साध जना संगारी तनासरी महला पंजवा सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म जाति रसना राम रसायन माती रंग रंगी

राम रहाव सिमर सिमर स्वामी प्रव्यपन निट न आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पाए उहर का ताम चरण कमल हर जन की थाती कोड़ सुख विश्राम गोबिंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वस संतन का संग पावो सो अगर मैं मानना व्यापे आड़ पैर गुण गाओ स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्यान्त प्रव जापन नानक रंग लगा परमेश्वर।

देखो तै तै स्वामी कोई न पहुंचन हार, जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत शार। करन हार खवाला होवा जाका अंत न पारावार, नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काढ़े मार।

काथे अगोचरा पतत उदाहरण नाम तेरा अंतरजामी नानक के स्वामी तरबत पूर्ण ठाकुर मेरा तनासरी महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर।

तिस न अगन प्रव्याप बुझाई, नानक उदरे प्रव शरणाई। तन्हा श्री महला पंजवा। तृप्त भई सज भोजन खाया, मन तरसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना, जीवन हर जप साध संग रखाओ। अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए, अन दिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ आस असवारी।

साधो यो जग परम भोलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुध बनता।

त्यावक बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल न जाए रहाओ। रख रख चरण तरे विचारी दुबदा छोड़ पए निरंकारी मुगत पदार्थ हरस चाखे आमन जान रहे पुर राखे सर्वर हंसा छोड़ न जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सर्वर मैं हंस हंस मैं सागर अकत कथा गुरबचनी आदर सुन मंडल एक जोगी बैसे नार ना पुरख कहो को कैसे तिर पवन जो तरहे लिवलाई तुर नरनाथ सचे सरनाई आनंद मूल अनाथ आधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वशल पे काटन हारे होमे मार मिले भगतारे अनक जन कर काल संताए मन न लखाए मंडल में आए जन्म पदार्थ दुबधा खोवे आप न चीनस प्रम प्रम रोवे है तो पढ़तो सुनतो एक तीर्ज धर्म तरणी तर टेक जत स संजम हृदय समाए चौथे पद को जे मन पति आए।

जाते साज स्वरूप तनाश्री महल्ला पहला। सहज मिले मिले या परवान ना तस्मरण ना आवन जान। ठाकुर मैं दास दास मैं सोए जय देखा ते अवर न कोए। गुरमुख भगत सहज कर पाइये बिन गुर फेटे मर आइये।

परम ध्यानी साच साचे भाव आनंद अनदन हरख साचा दुख किल विख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नामणु गावे गावन हार शब्द सुहावणु सारा ही साचे मन सदगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नावे देनी ता संगम सत सते आराद एकंकार साचा निद दे चढ़े सवाया गद संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कहे सब कोय ए बड़े आखिए ओ मूर्ख नीच अजान समझा साखिए सच गुर की साखी अमृत भाखी तित मन मान्या मेरा पूज करे आवे विख लादे शब्द सचे गुर मेरा आखण तोट ना भगत पंडारी भार पुर रहे आसोई नानक साच कहे बेनंती मन मान जाए सच सोई।

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करेई प्रभ सचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी नानक साच वसी सोहागण किरस्यों प्रीत प्यारी फिर कर सोहे नार।

विद्धन द्रैणी पुरु शब्द न माने फाही फाती सातन महल न पाए नानक आपे आप शाने गुरमुख सहज समाए तन सुहागण नार जिन पिर जाणिया जियो ना बिना कूड़ियार कूड़ कमाणिया जियो हर भगत सुहावी साचे भावी पाए भगत प्रवराती फिर रियाला जो बनबाला इस रावे रंग राती पुर शब्द विगासी सहो रावासी फल पाया गुणकारी नानक साच मिले वड़े आई फिर कर सोहे नारी।

कियो। दुख हर्त करता सुखे स्वामी चरण साधु आया, संसार सागर महा बिखड़ा पल एक महे तराया। पूरे या सर्वथाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो, बिनवंत नान सदा सिमरी सर्व दुख पय पंजनो। आप लिगे लड़ लाए कृपा तारिया जियो, मोय निर्गुण नीज अनाथ प्रभ अगम अपारिया जियो। दयाल सदा कृपाल स्वामी नीचता पणहारिया, जी जनसा वस तेरे तगर तेरी सारिया। आप करता आप भुगता आप सगल बीचारिया, बिनवंत नान गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया। तेरा दर्श अपार

जो होई इंद्र लोक शिव लोक के जैबो उसे तब कर बाहर आयबो क्या मांगो कुछ सिर नाही राम नाम रख मन माही रखाओ सोभा राज विभय बढ़ियाई अंत न काहू संग सहाई पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया इनते कहो कम ने सुख पाया कहे तो कबीर अवर नहीं कामा अमरे मन थन राम को नामा राम सिमर राम सिमर राम सिमर पाई राम नाम सिमरन बेन बूढ़ते अधकाई रहाओ बंता सुधे गृह संपद सुखदाई इनमें कुछ नागे तेरो काल अवध आई अजामल गजगन का

किरपयो दर्शन देखे, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, सरवन बाणी तुजस पूर राखो, मन सुमद कर करो चरण हिरदे धरो, रसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन कटे, मैं तो मोल महगी ले जी सटे, परहाओ सा संत बिना पाओ नहीं उपजे, पाविन भगत नहीं होए तेरी, कह रविदास एक बेनती हरस्यो पैज रखो राजा।

जंगम जाती तायो तूप दीप नहीं बेदा तायो पूजो पाती ताया वो खंड खोजते नविंद पाई ना कछ आए वो ना कछ।

कियो हमरा खुशी करे नित जियो परियां छत नीका अनाज मंगो सत सीका कऊ पैस मंगो लावेरी इक ताजन तुरी चंगेरी करकी गीहन चंगी चन तन्ना ले वै मंगी।

हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले तो गुर अंचल दीजे जन नानक चले मिलनता। जैत सरी महला चौथा हीरा लाल अमोल कहे पारी बिन गाक मी काका खा। रतन गा गुर साधु देखे हो ताब रतन बिकानून लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा। अरहाओ मानमुख कोठी अज्ञान अंधेर तेन का रतन लाखा। ते उजड़ परमुए गावारी माया पुयंग बिख चाखा। हर घर साग मिलो जननी के हर साधु शरण हमाराखा। हर अंगीकार करो प्रस्वामी थाम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाण है तों वड़ अगमड़ पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा। जैत सरी महला चौथा अंबार कशु न जाने गातमित तेरे मूर्ख मुगद एयाना। हर कृपा तार दीजे मत ऊतम कर लीजे मुगद सयाना। मेरा मन आलसिया उगुलाना हर घर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट खुलाना। अरहाओ गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरे हीर मेरे प्रीतम नाम पराना। बिन नावे मर जाएगे मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी तेन तुर पाग पुराना। तिन हम चरण सरेवे खिन खिन जिन घर मीठ लगाना। हर घर कृपा तारी मेरे ठाकुर जन बिछरिया चिरी मिलाना। तन तन सतगुर जिन नाम दृढ़ाया जन नानक तिस कुरबाना। जैत सरी महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हार रसक रसक फल लागबा। माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी पुर बचनी बिसगर काटबा। मेरा मन आराम न रस लागबा हर किए पतत पवित्र मिल साध गुर। हर नामे हर चाख बारहाओ तन तन वड भाग मिलियो गुर साधु मिल साधु ले उन्मन लागबा। तिसना अगन बुरी सांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गाए बा। तिनके पाखीन तुर पाए जिन स गुरदर्शना पाए बा। ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी ता बिरथा जन्म तिन जाए बा। हर द्यो बिमल मत गुर साध पग सेव है हम अगर मीठ लगाए बा। जन नानक रेण साध पग मांगे हर होए दयाल दिवाए बा। जैत सरी महला चौथा जिन हर हिरदे नाम ना बस्यो तिन माद की जे हर बन जा। तिन सुनी दे फिरे बिन नावे ओए खाब खा मोए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा। हर हर कृपाल कृपा प्रोतारी गुर ज्ञान दियो मन समझा। अरहाओ हर कीर्त कालजुग पद ऊतम हर पाई गे सतगुर माजा। औंबलेगारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा। दर्शन सद मिलो वडभागी सब केल बख गए गवाजा। सतगुर साहु पाया वडदाना हर किए बहुगुण सांझा। जिन को कृपा करी जग जीवन हर उरतारियो मन माजा। तर मराए दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। जैत सरी महला चौथा सत्संगत साध पाई वडभागी मन चल तो पयो अरूड़ा। अनहत तुन वाजे नित वाजे हर अमृत तारस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा। मेरे मन तन प्रीत लगाई सतगुर हर मिले उलाए च पीड़ा। अरहाओ सागत बंद पय है माया बिग संचय लाए ज कीड़ा। हर कै अर्थ खर्च न साक है जमकाल सह सिर पीड़ा। तेन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु बहु श्रद्धा लाए मुख तूड़ा। अलत पलत हर शोभा पावे हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु हम साध जना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी पग साध पुर मिल साधु पा खान हर वो मन मूड़ा। जैत सरी महला चौथा कर दूजा
एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर घर सिमरो अगम अपारा जे सिमरत दुख मिटे हमारा हर घर सतगुर पुरख मिलाव गुर विले सुख हुई राम हर गुण गावो मीत हमारे हर घर नाम रखो उर तारे हर घर अमृत भजन सुनावो गुर मिले प्रकट होई राम मसूदन घर माधो प्राणा मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना हर घर दया करो गुर मिलो पुरख निरंजन सोई राम हर घर नाम सदा सुख दाता हर के रंग मेरा मन राता हर घर महापुरख गुर मिलो गुरु नानक नाम सुख होई राम जयत श्री महला चौथा हर घर नाम जपाह गुरमुख नाम सदा लैला हर घर भगत रिड़ाभो हर घर नाम ओ महाराम।

चाहो सोई सोई पावो, आशा मनसा पूरव जब प्रभ कहो। गुर प्रसाद नानक मन वसिया, दुख न कबहू चूरव, पुज प्रभ कहो। जय तसरी महला पंजवा, लोड़ींदड़ा साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, कर कर तसे बसेरा। अरहाओ दुख आराधन दुख आराधन, बिसरे ना काहू बेरा, नाम जगत कोड़ सूर उजारा, बिरसे परम अंधेरा। थान थनंतर सब नहीं जाई, जो दिसे सो तेरा, संत संग पावे जो नानक, जिस भौर न होई है फेरा। जैत सरी महला पंजवा, कार चौथा दो पदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आव मैं, सुख पायो गुर आग, तजी सियान बचिंत सारी, अंग छोड़े हुए त्याग। रहाओ जो देखो तो सगल मोय मोहियो, तो शरण परयो गुर भाग, कर कृपा टहल हर लायो, तो जब छोड़ी मोहरी लाग। तेरे ओ सागर पाप को, जो संत फेटे वड भाग, जन नांग सर्व सो पाए, मोरो हर चरणी चित लाग। जैत सरी महला पंजवा, मन में सतगुर ध्यान करा, त्रिड़ो ज्ञान मंत्र हर नामा, प्रभु जीव माया करा। रहाओ काल जल अरमा जंजाला, छुड़के जमें डरा, आयो दो।

आवरूप पयो सत संग अनद पार परा आप्यो पियो गातियो परमा को नानक अजर जरा जैत सरी महला पंजवा जाको पय गोविंद सहाई सुख सहज आनंद सगल स्यों वाको व्याद न काई रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा न व्यापे उन्माई एक रंग तत के बेते सदगुरते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकुर की से ही संत सुपाई तिनके संग नानक निस्तरीय जिन रस रस हर गुण गाई जैत सरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधारे मैं दीप रखाओ सबल दर्शन तुमरा प्रप्रीतम चरण कमल आनूप

कार सतगुर प्रसाद स्वरूप आदि पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर तिमरंत संत सर्वत रमण नानक अगनासन जगदीश्वर पेखन सुनन सुनामनो मन में दृढ़िए साच पूरयो सर्वत्र में नानक हर अंगराच पौड़ी हर एक निरंजन गाइये सब अंतर सोई कारण कारण समर्थ प्रभ जो करे सो होई खिन में थाप्यो थापद किस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई आप जाए सो बुझसी निर्मल जन सोई श्लोक रचंत जी रचना मात गर्भ स्थापन तास सास स्मरंत नानक महा अग्नना विनाशन मुख तले पैर उपरे वसंदो कोथड़े थाए नानक सो तनी क्यों विसारियो उदरे जिस दय नाए पौड़ी रक्त बिंद कर निम्या अगन उदर मजार उर्द मुख चील बेकल नरक खोर गुबार हर सिमरत तू ना जल है मन तन उतार बेगम थानो जन रखिया तिस तिल नाम सार प्रा बिसरत सो कदे नाहे जासे जन्म हार श्लोक मन इच्छा दान करण सर्वत्र आशा पूर्ण है खंडन कल कलेश प्रा सिमर नानक ने दूरण थावरंग माने जिस संग तैसो लाइगे ने हो तो सो बिंद ना विसरो नानक जिन सुंदर किया देहो पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया तीने रस भोग गृह मंदर रथ अस दिए रज पले संजोग सुध बंता सजन सेवक दिए प्रा देवन जोग हर सिमरत मन तन हरिया ले जाए विजोग साध संग हर गुण रमो बिरसे सब सोग त्रोक कुटंब जतन करण माया अनेक उद्यम है हर भगत पादहीन नानक प्रा विसरत ते प्रेत ते सुटड़ी आसा प्रीत जो लाई बेअन स्यो नानक सच्ची रीत ताई से तीरते आ पौड़ी जिस विसरत तन पसम होए कहते सा प्रेत खिन घिर में बसन ना देवगी जिनस्यो सोई हेत कर अनर्थ दर्भ संचया सो कार्ज केत जैसा बीजे सो लुणे तर्म यो खेत अकृत कणा हर विस्तरिया जोनी परमहेत श्लोक कोट दान स्नान अनक शोधन पवित्रत उचरंत नानक हर हर रसना सर्व पाप विमुचते ईदन कीतो मूकणा ओरी दतीम पाहे मन वसंदरो सच सहो नानक हब्बे डुखड़े उलाहे पौड़ी कोट अगा सब नास होए सिमर तर नाओ मन चिंदे फल पाईए हर के गुण गाओ जन्म मरण पै कटिए नित्य साथाओ पूर्व हो गए लिखिया हर चरण समाओ कर कृपा प्रभ राख लेहो नानक बल जाओ श्लोक गृह रचना अपारंग मन बिलास स्वादंग रस कंदाच ने स्मरंत नानक ते जंत दिष्टा क्रिम मुझ अडंबर हब के हो मंज मोहब्बत नेह तो साई जय विसर नानक सो तन खेह पौड़ी सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे गृह सोय चंदन सुगंध लाए मोती हीरे मन इच्छे सुख मानद इशनाए विसूरे तो प्रचेतन आवई विष्टा के कीरे बिन हर नाम ना सांत होए किर बिद मन तीरे श्लोक चरण कमल बिरह खोजंत बैरागी दह दिस त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग में मन साई मुख उचरा वत्ता हब्बे लो नानक हब अडम

ओक राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भत है संचंत दिखिया शलंग शिद्रं नानक बिन घर संग न चालते पेखंदड़ो की पुल तुम्मा दिस्तम सुना अड़ना लहंदड़ो मुल नानक साथ न जुलई माया।

जप मन राम नाम निस्तार कोट कोट अंतर के पाप सब खोवे हर भवजल पार उतारा रखाओ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निरभव निर्वय निरंकारा हर निगट बस कज नजर न आवे हर लादा गुर विचारा हर आपे सहो सराफ रतन हीरा हर आप किया पासारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो सहो सचा बणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मन हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्याये सुखदाता जाका अंत न पारा वारा रहाओ अगन कुंट में उर्दले।

तन महल न पावे विण कर्मा किश पाइये नाही जे वो तेरा तावे। लब लोभ अंकार की माती माया माए समाणी इन्नी बाती सो पाइये नाही भई कामण एयाणी। जाए पुछो सुहागणी वाहे किन्नी बाती सो पाई है जो कुछ करे सो पला करमानी है। हिकमत हुक्म चुकाई है जाके प्रेम पदार्थ पाई है तो चरणी चित लाई है।

तेन हर फल पावे, जिन्ना हर से ती पिरहड़ी तिन्ना जी प्रवनाले। ओए जप जप प्यारा जीम दे हर नाम समाले, जिन गुरमुख प्यारा सेवया तिन कौ कुम जाया। ओए आशते परवार स्यों सब जगत छड़ाया, गुर प्यारे हर सेवया गुर तन गुर तन्नो, गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुन्नो। जो गुर सिख गुर सेव दे से पुन पराणी, जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुरबाणी। गुरमुख सखी सहेलियां से आप हर पाईया,

पर चेतना है तो चेतल है, निर्दिन मय प्राणी, छिन छिन औध विहात है, फूटे कड़जो पानी, हराव हर गुण गाये ना गाव ही, मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कह, न मरन पछाना, आजू काज बिगड़े हो नहीं, जो प्रभु गुण गावे, कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे, तिलंग महला नामा, जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कहां गाफल सोया, जो दल उपजिया संग ही, सो पी संग न होया रखाओ, माग पिता सुध बंद जान, हित जा सो कीना, जियो छूट्यो जब देत, डार अग्न मैं दीना, जीव तलो व्यवहार है, जको तुम जानो, नान खर गुण गाए ले, सब सुफन समानो, तिलंग महला नामा, हार जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो, अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो, अरहाओ, संपत रतन राश्यो, आत्मनिहो लगायो, काल फास जब गल परी,

तीन तेरा नाम है अधारा अरहाव करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी हाजरा हजूर दर पेश तू मनी दरियाओ तू देहंद तू विशियार तू तनी देह लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे ते स्वामी बगसंद तू हरी हल्ले यारा खुशखबरी बाल बल जाओ हौ बल बल जाओ नीकी तेरी बेगारी आले तेरा नाओ अरहाओ कुजा आमत कुजा रवती कुजा मेरवी द्वारका नगरी रास बगोई

रसना नाम जपोता मथिये इन विद अमृत पावो मन संपट जित ससरनावन भावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहेब रब तरहे कहंदे कहे कहे कहे जावे तुम सर अवर ना कोई भगत हीन नानक जन जंपे।

तीर्थ मल मल नहाए, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, जे को भय अलाए अरहाओ, जैसा भी जे सोलने, जो खट्टे सो खाए, अगे पुछ न हो गई, जे सण निशाने जाए, तैसो जैसा काढ़िए, जैसी कार कमाए, जो दम चित न आवई, सो दम बिरथा जाए, यो तन वेची बै करी, जे को लहे विकाए, नानक कम न आवई, जिद तन नाही सच्चा नाओ। सूही महला पहला, कार सतवा, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, जोग ना खिंता, जोग ना डंड, जोग ना पसम चढ़ाई है, जोग ना मुंदी मूड मुड़ाए, जोग ना सिंगी वाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुगत एव पाई है, गल्ली जोग ना होई, एक दृष्ट कर समसर जाने, योगी कही है सोई रहाओ, जोग ना बाहर मड़ी मसानी, जोग ना ताड़ी लाई है, जोग ना देद संतर पवे है, जोग ना तीर्थ नाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुगत एव पाई है, सतगुर भेटे ता सहसा टूटे, धावत वर्ज रहाई है, निज चरे सह तुन लाग, कर ही परचा पाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुग तिव पाई है, नानक जीव त्या मर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाजों सिंगी वाजे, तौ निरभौ पद पाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुगत तौ पाई।

तू आपे सर्व समाना रहाओ, मन तारा जी चित तुला, तेरी सेव शराब कमावा, घट ही पीतर सो सो तोली, एन विध चित रहावा, आपे कंडा तोल तारा जी, आपे तोलनहारा, आपे देख आपे बूझ, आपे है बणजारा, अंदुला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, ताकी संगत नानक रहंदा, क्यों कर मूड़ा पावे, राग सूही

अतीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कहे मुख राता, कहो नानक प्रा बिनो सुनीज, कुचल कठोर

न जाए। सर्व निरंतर एको जाग, जित जित लाया तित तित को लाग। अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोल आया तेरा। सूही महला पंजवा, प्रातः काल हर नाम उचारी। ईत ऊत की ओर सवारी, सदा सदा जपिए हर नाम। पूर्ण हो वह मन के काम रहाओ, प्राप अवनाशी रैन दिन गाओ। जीवत मर्त निचल पावे थाओ, सो साओ सेव जिद तोट न आवे। खात खर्चत सुख अनद विहावे, जग जीवन पुरख साध संग पाया।

जियो पिंड सब तुमरा माला, अमृत नाम चले जपनाला, नानक जाचे संतर वाला, सूही महला पंजवा, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, आपे थम्मे सच्चा सोई, हर हर नाम मेरा आधार, करण कारण

पूरे भाग प्राप्त होई। अरहाओ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोनी दूता लाई प्रेम शोगा करत कसाई। निर्दय जंत हृदया न पाई, अनक जन्म बीतियन फरमाई। तरवास न देवे दुत्तर माई, दिन रैन अपना किया पाई। किस दोष न दीजे किरत पवाई, सुन साजन संत जन पाई। चरण सरण नानक गद पाई, अराग सूही

कामना तौल हार जित हर बिसराए रहाओ अंध गरीबी साध संग जित प्रवचित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपटाए पीसना पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोखाए ऐसो राज ना कित काज जित नह त्रिवताए नगन फिरत रंग एक कै ओ शोभा पाए पाट पटंबर बिरथया जे रच लोभाए सब किश तुमरे हाथ प्रभ आप करे कराए सास सास सिमरत रहा नानक दान पाए सूगी महला पंजवा।

इन पी अंत न पायो तेरा लाए थके विभूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सबल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन

ना कुल टंग ना मीठे बैना अरहाव छह सीगर कामन करे आवे ता सुहागन जा कंते पावे ना तिस रूप ना रेख्या काई अंत ना साहेब सिमरिया जाई तुरत मत ना ही चतुराई कर कृपा प्रभ लाभ हो पाई खरी सियाणी कंत न पाणी माया लागी परम फुलाणी हो में जाई ता कंत सुमाई तो कामन प्यारे नव निध पाई अनक जन्म बेशरत दुख पाया कर गए लेहो प्रीतम प्रवराया पंत नानक सौ है पी होसी जय पावे प्यारा तय रावेसी सूही महला पहला कर नावा एक ओंकार सदगुर प्रसाद कच्चा रंग कसुंभ का थोड़िया दिन चार जियो रिणनावे प्रम फुलिया ठग मुठी कूड़ियार जियो सच्चे से तीरत्या जन्मना दूजी वार जियो रंगे का क्या रंगीए जो रत्ते रंग लाए जियो रंगण वाला सेविए सच्चे स्यों चित लाए जियो रहाओ चारे कुंडा जे पवे बिन भागा तन नाहे जियो अवगण मुठी जे फिरे बदक थाए ना पाहे जियो गुर राखे से उबरे सब दरते मन माहे जियो चिट्टे जन के कपड़े मैले चित कठोर जियो तेन मुख नाम ना उपजे दूजे व्यापे चोर जियो मूल ना बूझे अपना से पशुआ से टोर जियो नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख जियो करता चित न आवई

दे चाखी तृष्णा अग्न बुझाए गुर के शब्द राता सहजे माता सहजे रहा सुमाए हर का नाम सत कर जाने गुर के पाए प्यारे सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच्चे नाए प्यारे एक को सच्चा सब में वर्त विरला को विचारे आपे मेल लहे ता बगसे सच्ची भगत सवारे सबो सच सच सच वर्त गुरमुख को ई जाने जमण मरण हुकम वर्त गुरमुख आ पछाणे नाम त्याए ता सतगुर पाए जो इच्छे सो फल पाए नानक तिसदा सब किश होवे जे विचों आप गवाए सूही महला तीजा काया कामण अत सवालेओ फिर वसे जिस नाले फिर सच्चे ते सदा सुहागण गुर का शब्द सुमाले हर की भगत सदा रंग राता होमे विचों जाले वाह वाह पूरे गुर की बाणी पूरे गुर ते उपजी साज समाणी अरहाव काया अंदर सब कुछ वसे खंड मंडल पाताला काया अंदर जग जीवन दा तावस सब ना करे प्रतपाला काया कामण सदा सुहेली गुरमुख नाम सुमाला काया अंदर या पे वस अलख न लखया जाई मानमुख मुगद बूझे नाही बार पालन जाई सदगुर सेवे सदा सुख पाए सदगुर अलख दिता लखाई काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे पंडारा इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजार इस काया अंदर नाम नौनद पाईए गुर कै शब्द विचारा काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलनहारा यो मरतन जवाहर माणक जिसका मोल अफारा मोल किधगी नाम पाईए नाही नाम पाईए गुर विचारा गुरमुख होवे तो काया खोजे होर सा परम खुलाई जिसनु दे सोई जन पावे होर क्या को करे चतराई काया अंदर पाओ पाओ वसे गुर प्रसाद दीपाई काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश सब ओपत जित संसारा सच्चे अपना खेल रचाया आवा गौण पासारा हुए सदगुर आप दिखाया सच नाम निस्तारा सा काया जो सदगुर सेवे सच्चे आप सवारी विणनावे दर टोई नाही ता जम करे खुवारी नानक सच वड्याई पाए।

तुद अंतर हों सुख वसा, तू अंतर सा बास जीओ, पाणे तख्त वडाइया, पाणे भीख उदास जीओ, पाणे थाल सिर सर्व है, कामर फुले आकाश जीओ, पाणे पवजल लंगी है, पाणे मंज परियास जीओ, पाणे सो सो रंगला, शिवतरता गुणतास जीओ, पाणे सौ पीहावला, हौ आमन जान मुइयास जीओ, तू सो अगम अतोलवा, हौ कै कै टह पैयास जीओ, क्या मांगो क्या कह सुनी, मैं दर्शन पूख प्यास जीओ, गुरसबदी सौ पाया, सच नानक की अरदास जीओ, सूही महला पंजवा, गुणवंती जो दिसे गुर सिखड़ा, तेस निम निमला गोपाए जीओ, आखा बिरता जी की गुर सज्जन दे मिलाए जीओ, सोई दस उपदेसड़ा, मेरा मन अंत ना काहू जाए जीओ, इहो मरताए कूंडे वसा, मैं मार्ग द्यो बताए जीओ, हौ आया दूर हौ चल कै, मैं तक्की तौ सरणाए जीओ, मैं आसा रखी चित मैं, मेरा सबो दुख गवाए जीओ, इत मार्ग चले पाई अड़े, गुर कहे सो कार कमाए जीओ, त्यागे मन की मतड़ी,

बिन गुर गुण ना सुमावनी बलराम जियो, गुण सार न जानी परम फुलाणी, जोबन बाद गवाया वार कार दार दर्शन नहीं जाता, फिर का सहज ना पाया, सदगुर पूछ ना मार।

ताओक नेरा सुन प्रा मेरा, मैं तेरा परवस। दर्शन देख पई ने केवल, जन्म मरण दुख नासा। सगली जोत जाता तू सोई, मिलिया पाए सुभाए। नानक साजन कौ बल जाइए, साच मिले कर आए। कर आएड़े साजना तां तन करी सरसी राम, हार मोहेड़ी साच ठाकुर देख रहंसी राम। गुण संग रहंसी खरी सरसी, जां रवि रंग रते। अवगुण मार गुणी कर छाया, पूरे पुरख विधाते। तस्कर मारवसी पंचायण, अदल करे विचारे। नानक राम नाम निस्तार, गुरमत मिले प्यारे। वार पाएड़ा बालड़िए, आस्था मनसा पूरी राम। तेरे रावेड़ी शब्द रली, रव रहया न दूरी राम। प्रा दूर न होई कड़कड़ सोई, तिसकी नार सबाई। आपे रसिया आपे रावे, ज्यो तिरदी वड्याई। अमर अडोल अमोल अपारा, गुरपूरे सच पाई है। नानक आपे जोग संजोगी, नदर करे लिवलाई है। फिर उचड़िए माड़िए, त्यो लोवा सिरता जा राम। हाँ विष्णु पई देख गुणा, अनहद शब्द अगा जा राम। शब्द विचारी करनी सारी, राम नाम निशानों।

बचाई मन वजी वधाई। जब साजन सुने कर आए गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए वर पाया पुरख अगम अगोचर। सद नवतन बाल

नदर प्रभु सत्संग हार मंगल रस रसन रसाय नारक नाम परगासा अंतरतन विचार गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रसवते पाया जो प्रभु कहे सोई पर कीजे नानक अंक समाया हर प्रभु काज रित्याया गुरमुख वियाहने आया वियाहने आया गुरमुख अर पाया सातन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जीव आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रपाया मैं सचा ना करे मरे ना जाई राग सूगी शंत महला चौथा कार तीजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाजे शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे घर प्रतेरे तू करता सब ताई आयन जपी सदा सालाही साज शब्द लिवलाई अनदिन सहज रह गए रंग राता राम नावृद पूजा नानक गुरमुख एक पछाण अवर ना जाने दूजा सब में रव रहया हो प्रवेंत्र जमी राम गुर शब्द रवे रव रहया हो प्रमेरा स्वामी राम प्रमेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रव्या सोई गुरमत सच पाईए सह समाईए तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभावा आपे लय मिलाए नानक सो प्रभ शब्दे जापे अहेन सुनाम ते आए इहो जगो दुत्तर मनमुख।

सो सदा सद जीवई बलराम जियो, तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सिरजनहारा, जिते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रैन आस तुम्हारी, सबल दर्श पेटिया गुरपूरा, नानक सद बलिहारी। समलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जीओ, सदगुर मिलिया दयाल गुण अवनासी गाया बलराम जीओ। गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया, शुभ दिवस आए गए कंठ लाए मिले अंतर जामिया। सत संतोख वजे वजे अनहदा चुनकारे, सुन पए बिनासे सगल नानक प्रापुरख करणे हारे। उपजा तत ज्ञान सहुरे पेईए, एक हर बलराम जियो, ब्रह्मे ब्रह्म मिलिया।

प्रीतम हर गुण सुनिए अबनासी राम। सुन सुन यो मन निर्मल होवे कटिए काल की फासी राम। कटिए जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सो ज्ञाना। हर हर जप जपिए

आपे रखा, आप पिता आप माया। कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन इउ थान सुहाया। कर मंदर हटनाले सोहे, जिस च नाम निवासी राम। संत भगत हर नाम अराधे, कटिए जमकी फासी राम। काटी जम फासी प्रभ अविनाशी, हर हर नाम तिहाए। सगल समग्री पूर्ण होई, मन इच्छे फल पाए। संत सज्जन सुख माणे रलियां, दुख दर्द प्रम नासी। शब्द सुहारे सतगुर पूरे, नानक सदबल जासी। दात खसम की पूरी होई, नित नित चढ़े सवाई राम। पार

बिनवंत नानक इश पुन्नी एख दर्शन जीजे राग सूही महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हों संभल थकी जी ओ कदे ना बोले।

आपे सृष्ट उपायन आपे फुन गोई जुग चारे सा पक्ष की किन कीमत होई। सतगुर एक विखालिया मान तन सुख होई गुरमुख सदा सलाई है करता करे सोई। श्लोक मोहल्ला दूजा जिन्ना पाओ तिन नाए पाओ मुझ पौ ने पवे आहा नानके उपटंतरा तित दीबान गए आहा। महला दूजा तुरदे को तुरदा मिले उड़ते को उड़ता जीवते को जीवता मिले मुए को मुआ नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सचे गुर शब्द विचारी। होमे मार मन निर्मला हर नाम उर तारी कोठे मंडप माड़िया लग पे गुवारी। जिन किए तसे ना जाननी मनमुख गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सत्या क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामण तो सीगार कर जा पहला कंत मनाए मत से जे कंत न आवई ए वै बिरथा जाए। कामण पिरमन मानिया तो बनिया सीगार किया तो प्रवान है जा सो तरे प्यार पौ सिगार तंबोल रस

पौड़ी सच्चा अमर चलायून कर सतपुरमान सदा निचल रव रहा सो पुरख सुजान गुर प्रसादी सेविए सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान आगम अगोचर अलख है गुरमुखर जान श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका भीतर तरिया आन खोटे खरे परखियन साहिब कै दीवान महला पहला नावन चले तीरथी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नात्या दोए पा चढ़िए सहोर बार तोती तूमड़ी अंदर विस निकोर साध पले अणनात्या

इहो रंग कदे ना उतरे साच समाए। अंतर शब्द मिटिया अज्ञान अंधेरा, सदगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा। जो सच राते

सुखदाता कीमत नहीं पाई। पूरे पाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया, गुर का शब्द अत मीठा लाया, नानक तृष्ण बुझी मन तन सुख पाया। अराग बलावल महला चौथा, कार तीजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद उद्यम मत प्रव अंतर जामी, ज्यों प्रेरे त्यों करना, ज्यों नडुआ तंत वजाए तंती, त्यों वाजे जंत जना।

माया ग्रस्त परमत है प्राणी, रख ले वो जने अपना, ज्यो प्रहलाद हरनास ग्रस्यो, हर रख्यो हर सरना, कामन कमन की गात मित कहिए, हर की गे पतत पवन्ना, ओ टोवे टोर हाथ चमचमरे, हार उतरे ओ परे ओ सरना, प्रभ दीन दयाल भगत पवतारन, हम पापी राख पपना, हर दासन दास दास हम करियो, जन नानक दास दासन्ना, बिलावल महला चौथा, हम मूर्ख मुग्ध अज्ञानमती, शरणागत पुरख अजन्मा, कर कृपा रख ले।

पाई मिल घर घर कथा करहो। हर घर नाम बोध है कलयुग खेपट गुर शब्द करहो। मेरे मान हार गुण हार उच्च हो मस्तक लिखत लिखे गुण गाए मिल संगत पार पर हो रहाओ। काया नगर में राम रसी उत्तम क्यों पाइये उपदेश जन करहो। सतगुर सेव सबल घर दर्शन मिल अमृत हरस पियो। हर घर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिखो। गुरमत हरस मीठा लाग ते बिसरे सबिख रसो। राम नाम रस राम रसायन हर सेवो संत जनो। चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर पजो। बिलावल मोहल्ला चौथा खत्री ब्राह्मण सूद वैस ओ जापे हर मंत्र जपैनी। गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो नित सेवो दिन सब रैनी। हर जन देखो सतगुर नैनी जो इच्छा।

जे बात होवे नहीं। अपना पला सब कोई बांछ सो करे जे मेरे चितना चितैनी। मन की मत त्यागो हरजन एहा पात कठैनी। आन दिन हर हर नाम त्यावो गुर सतगुर की मत लैनी। मत सुमत तेरे वस स्वामी हम जंत तू पुरख जनतैनी।

आयो पुरखोत्तम अन दिन अंध आनंदे धर्म राय की कान चुकाई सब चूके जम के छंदे जप मन हर हर नाम गोविंदे वड़भागी गुर सदगुर पाया गुण गाए परमानंदे रघाओ साकत मूड माया के बदक विच माया फिरे फिरंदे तृष्णा जल तिरत के बांधे जो तेली बल्द पवंदे गुरमुख सेव लगे से उधरे वड़भागी सेव करंदे।

13 बोलो पैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगत तारनो हर भरपुर रहया जल थले राम नाम नित गाइये घर दुख बसारनो रगाओ हर किया है सबल जन्म हमारा हर जपया घर दुख बसारन हारा गुर पेटया है मुक्त दाता हर की हमारी सबल जाता मिल संगती गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा वित्यासा हुए निरासी सो जन मिलया घर पासी ओई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पगलावनो राग बिलावल महला पंजवां।

साध संग सब दुख मिटाया, रब रहया प्रसम आपे, हार जप रसना दुख ना व्यापे रखाओ, तिखा भूख बो तप्त व्यापिया, शीतल पए हर हर जस जापिया, कोट जदन संतोख न पाया, मान तृप्ताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी, बलाबल मोहल्ला पंजवा, गुरपूरा बड़ भागी पाइये, मिल साधु हर नाम त्याइये, पार ब्रह्म प्रो तेरी सरना, केल भी काटे पज गुर के चरना रखाओ, आवर कर्म सब लोका चार, मिल साधु संग हुए उधार, सिमरत सास्त वेद विचारे, जपिये नाम जित पार उतारे।

आओ, जो जो निंद करे इन ग्रहण की, इस आगे ही मारे करतार। नानक दास ता की शरणाई, जा को शब्द अखंड अपार।

तो प्रसन्न पै सगुर प्रभु कज बिघन नाथीय। जा का अंग दयाल प्रभ ताके सबदास सदा सदा वडियाईया।

तुम प्यारे हम परादीस फूलते तो बख्शन हारे रघाओ हम अवगुण करे असंख नीत तुम निर्गुण दाता रे दासी संगत प्रभु त्याग एक कर्म हमारे तुम देव हो सब दया तार हम अकिरत कन्हारे लाग परे तेरे दान स्यों नए चिदक समारे तोय ते भार किश नहीं पव काटन हारे कहो नानक शरण दयाल गुर लेहो मुग्ध उधारे बिलावल मोहल्ला पंजवां दोष ना काहू दीजिए प्रभ अपना त्याइए जित सेवे सुख होए कना मन सोई गाइए कई एकाए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी सब अवगन हमा रहाओ ज्यों तुम राखो त्यों रहा अवर नहीं चारा नी तरिया तर तेरिया एक नाम अधारा जो

अंध कुब मैं गलत थे ताडे दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन पेटत होवत सुखी जी दान देन रखाओ परा पूर्वला लिखया मिलया अब आए बस्त संग हर साध कै पूर्ण आसाए पै बिरसे त्यो लोग के पाए सुख थान दया करी समरथ गुर बसिया मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करण कारण समरथ प्रभ हर अगम अपार बलावल मुहला पनवा सोई मलीन दीनहीन जिस प्रभ बिसराना करने हार ना बूझई आप गने बेगाना दुख तदे जद विसरे सो प्रभ चित आए संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रखाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन मैं थापे कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापे पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुबने का सुबना पया संग चलिया कमाया करण काल समरथ प्रभ तेरी शरण आई हर दिन सरायण नानक जपे साध सद बल जाई बलावल मुहला पंजवा जल टोवो ए शीस कर पग पखलाओ बार जाओ लख बेरिया दर्स पेख जीवावो करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभते पाव दियो सूनी साध के बीजन ठो लावो रखाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पी लावो वो रस में सांत तृप्त होए बिखे जलन बुझाओ जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो करो नमस्कार भगत जान तूर मुख लावो उठत बैठत जपो नाम यो कर्म कमावो नानक की प्रा बेनती हर शरण समाओ बिलावल मुहला पंजवा इहो सागर सोई तरह जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वस वडभागी पाए सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जने आखी प्रगट पई सब लो मैं सेवक की राखी रखाओ आगन सागर ते काढ़या प्रभ जलन बुझाई अमृत नाम जल संचिया गुर पए सखाई जन्म मरण दुख काटया तो का थान पाया काटी सिलक प्रम हो की अपने प्राप आया मत कोई जानो अवर कश सब प्रभ के हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ बिलावल मुहला पंजवा बंधन काटे आप प्रभ हुआ कृपाल दीन दयाल प्रपार ब्रह्म

रोग रगव औगद हर का नाम है जित रोग ना व्यापे साध संग मन तन हित फिर दुख ना जापे हर हर हर हर जापिए अंतर लिवलाई केल उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई सोनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बिलाई महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई बलावल महला पंजवा पए ते उपजे भगत प्राभ अंतर हुए शांत नाम जपत गोविंद का बिरसे परम प्रांत गुरपुरा जिसे फिटिया ताके सुख परवेश।

राम नाम तन संचया जाका नहीं सुमार। शरण परे प्रभु तेरिया प्रभु की वडियाई, नानक अंत ना पाईए बेअंत गुसाई। बिलावल मोहल्ला पंजवा, सिमर सिमर पूर्ण प्रभु कार्ज पैरास, करतारपुर करता वसै संतन कै पास रखाओ। बिघन न को लागता गुर पै अरदास, रखवाला गोविंद राय भगतन की रास। तोट न आवे कदे मूल पूर्ण पंडार, चरण कवन मन तन बसे प्रभ पगम अपार। बस्त कमावत सब सुखी किश ऊन ना दिस, संत प्रसाद पेटे प्रभु पूर्ण जगदीश। जय जयकार सभे करे सजथान सोहय, जप नानक नाम निदान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल मोहल्ला पंजवा, हर हर हर आराधिये होई गई आरोग। रामचंद की लश्त का जिन मारिया रोग, रघाव गुर पूरा हर जापिए नित कीचे भोग। साध संगत कै वारणे मिलया संयोग, जे सिमरत सुख पाईए

को नास चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग कड़ सास रहाओ मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास नानक प्रभ शरणागति जा को निर्मल जास बिलावल मोहल्ला पंजवा सर्ब सिद्ध हर गाई।

सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन जी सगल दयाल पै हर हर नाम चीन रखाओ पूर रहे सर्वत्र मैं।

रोग मिटाए जीवालयन जा कावड़ प्रताप दोख हमारे बसेयन अपनी कल तारी मन बांझत फल दितेयन नानक बलिहारी राग बिलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मोहन श्रवणी ए ना सुनाए साकत गीत नाद तुंगाव बोलत बोल अजाए रहाओ सेवत सेव सेव साध सेवो सदा करो किरताए अपय दान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए रसना अघ अघ गुण राती

ऊपर पावे, एकत सुनत सदा संघरे रखाओ। काज भ्याजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होमन तौरा अनहोमन मीठा, दिखिया मैं लपटाए जरे। अंध कूप मैं परे हो प्राणी, परम गुबार मुह बंद परे। कहो नानक प्रभुत दयारा, गुर पीटै काढे वहां फरे। बिलावल महला पंजवा, मन तरसना हर चीना, पै आनंदा मिटे अंदेसे।

चरण गहे आमन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपो होए पजो जगदीश इो पदार्थ वड़ भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रदाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंजवां सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कही ना पहुंचे सुलही होए मुआ ना पाक रखाओ काड कुठार खसम सिर काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचया जिन रचिया तिन दीना ताक उत्तर मीत तन किशु न रहो तो छोड़ गया सा पाई साक कहो नानक तिस प्रभ लिखारी जिन जनका कीनो पूर्ण वाक बलावल मोहला पनवा पूरे गुर की पूरी सेव।

अब मेरे को वड प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुर वस कीने जिन सगले जंत चरण कमल नानक शरणाई आराम नाम जप निर्मल मंत।

हस प्रदीने जगत उदाहरण नवखण परताप दुख बिन से सुख अन्न प्रवेश कृष्ण बुझी मन तन सज तराप अनाथ को नाथ शरण समर्थ सगल सहित को माई बाप भगत वछल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक आलाप बिलावल मोहला पनवा जिस ते उपजिया तिसे पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम होए कल्याण रखाओ गुरपूरा पेट्यू बड़भागी अंतर जामी सोड़ सुजान हाथ दे राखे कर अपने बड़ समरथ निमाणिया को मान ब्रह्म पै बिनस गए।

मनाम हृदय उरधार। जियो पिंड तन रास प्रभ तेरी, तू समरत स्वामी मेरा, दास अपने को रखन हारा, नानक दास सदा घर चेरा। बिलावल मोहला पंजवां, गोविंद सिमर हुआ कल्याण, मिटी उपाद पया सुख साचा, अंतर जामी सिमरिया जान रहाओ। जिसके जी तिन किए सुखाले, भगत जिना को साचा तान, दास अपने की आपे राखी, पए पंजन ऊपर करते मान। पई मित्राई मिटी बुराई, दृष्ट दूत हर काढे शान, सुख सहज आनंद कनेरे, नानक जीवे हर गुणे वखान। बिलावल मोहला पंजवां, पार ब्रह्म प्रापय कृपाल, कारज सगल सवारे सतगुर, जप जप साधु पय निहाल रखाओ। अंगीकार किया प्रभ अपने, दुखी सगले पय वाल, कंठ लाए राखे जने अपने, उधर लिगे लाए अपने पाल। सही सलामत मिल कर आए,

मूला लसों प्रीत बनी अरहाओ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माहे बस्त है तू कर कृपा प्रवे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को आकथ कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहित है मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी बिलावल महला पंजवा हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हिरदे तर मन ध्यान रखाओ सिमर सिमर सिमर सुखदाता जाका किया सगल जहान रसना रबो एक नारायण ताती दरगे पावो मान साधु संग प्राप्त जाको तिन्ही पाया इहो निधान गावो गुण कीर्त नित स्वामी कर कृपा नानक दीजे दान बिलावल महला पंजवा राख लिगे सतगुर की शरण जय जयकार हो आज अंतर पार ब्रह्म तेरो तारण तरण रखाओ विश्वम पर पूर्ण सुखदत्त सगल समग्री पोखण परण थान सनंतर सर्व नरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करण आद जुगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरण।

दूत धुट सब होए खया, गुण अवगुण प्रकश ना बिचारियो, कर कृपा अपना कर लया, अतुल बड़ाई अचुत अबनासी, नान कुचरे हर की जया। बिलावल मोहल्ला पनवा, बिन पय भगती तरन कैसे, करो अनुग्रोपत उदाहरण, राग स्वामी आप परोसे रघाव, सिमर नहीं आवत फिरत मदमावत, दिखया राता स्वान जैसे, औद विहावत अदक मुहावत, पाप कुमावत बुढ़े ऐसे, सरण दुख पंजन पुरख नरंजन, साधु संगत रमन जैसे, केशव कलेस नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे। राग बिलावल महला पंजवा, दो पदे हर नामा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, आपे मेल लए, जब ते शरण तुम्हारी आए, तब ते दुख गए रहाओ। तज अब महान अरचिंत बैरानी, साधे शरण पए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम, तांते रोग खय, महामुद अजान अज्ञानी, रखे तार दए, कहो नानक गुरपुरा फेट्यो, आमन जान रहे। बिलावल मोहल्ला पंजवा, जीवो नाम सुनी, जो सो प्रसन्न पए गुरपूरे, ता मेरी आस पुन्नी रहाओ। पीर गई बंदी मन तीरा, मुयो अंध तुनी, उबजो चाओ मिलन प्राप्रीतम, रहन ना जाए खिनी, अनक भगत अनक जनतारे, तिमरे अनक मुनि, अंधले टेक निरथन तन पायो, प्रभ नानक अनक गुणी। राग बिलावल महला पंजवा, कर तेरवा पड़ताल।

आप ना बूझे लोक बजावे मन का अंधा अंध कुमावे तार कर महल ठौर कैसे पावे हर जियो सेव गे अंतर जामी कट कट अंतर जिकी जोत समानी तिस नाल क्या चले पै नामी साचा नाम साचे शब्द जाने आपे आप मिले चूके अभमाने गुरमुख नाम सदा सदा वखाने सदगुर सेवे दूजी दुरमत जाई औगण काट पापा मत खाई कंचन काया ज्योति ज्योत समाई सदगुर मिले वड्डी वडियाई दुख काट हिरदे नाम साई नाम रते सदा सुख पाई गुरमत मान्या करणी सार गुरमत मान्या मुख द्वार नानक गुरमत मान्या परवार साधार बिलावल महला चौथा अष्टपदियां।